0: उन सरपट दौड़ने वाले घोड़ों की कसम जो हांफ उठते हैं, फिर पत्थरों पर नाल मारकर आग निकालते हैं, फिर सुबह को छापा मारते हैं, फिर उस वक्त गर्द उड़ाते हैं, फिर उस वक्त दुश्मन की फौज में जा घुसते हैं कि इंसान अपने परवरदिगार का बड़ा नाशुक्रा है और वो इस बात से आगाह भी है, और बेशक वो माल से बहुत मोहब्बत करने वाला है। क्या वो उस वक्त को नहीं जानता कि जब मुर्दे कब्रों में से बाहर निकाल लिए जाएंगे और जो भेद दिलों में हैं वो जाहिर कर दिए जाएंगे, बेशक उनका परवरदिगार उस रोज उनसे खूब वाकिफ होगा।
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے।

0: खड़खड़ाने वाली, खड़खड़ाने वाली क्या है और तुम क्या जानो कि खड़खड़ाने वाली क्या है? वो कयामत है जिस दिन लोग ऐसे होंगे जैसे बिखरे हुए परवाने और पहाड़ ऐसे हो जाएंगे जैसे धुनकी हुई रंग बिरंगी ऊन। अब जिसके आमाल के वजन भारी निकलेंगे वो दिल पसंद ऐश में होगा और जिसके वजन हल्के निकलेंगे उसका ठिकाना हाविया है। और तुम क्या समझे कि हाविया क्या चीज है? वो दहकती हुई आग है।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
0: शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।

0: किया है सिंध जी दिल जी मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुगर खां भी दाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी करो नहीं।

जी समय प्रोग्राम है रोशन सुबह मामा जो मेजबान नेमत अल्हा जूने जो समय अवां के बुझाइंदासी त जिन भी दोस्तन पंहिंजो सवाल हिन हफ़्ते जो नोट नाहे कयो त उहो बिल्कुलु असां अवां खे वरी बि सवाल नोट करे पिया छो त असांजो जेके पंहिंजे सिंध जो समूरो जेको नेटवर्क आहे सिंध जो तमामु वॾे में वॾो नेटवर्क आहे उहो आहे GFM 88 जो त असांजा कमर्शियल्स बि तमामु हलंदा आहिनि घणा त उन हवाले सां कुझु दोस्तनि जेको आहे सो गुज़ारिश कई आहे त असां कमर्शियल जे करे असां जेको आहे सवाल नाहे नोट करे सघिया त सवाल नोट कयो असांजो सवाल आहे त गुम थी वियल माण्हुनि जो आलमी ॾींहुं कॾहिं मल्हायो वेंदो आहे जी हा गुम थी वियल माण्हुनि जो आलमी ॾींहुं कॾहिं मल्हायो वेंदो आहे त साईं जा असांजे सवाल जो सही जवाब तव्हां मोकिले सघो था SMS ज़रिए SMS करण जो आसान तरीक़ो आहे तव्हां मोबाइल जे राइट ऑप्शन में वेंदो उते LRK लिखी यानि लाड़काना थी वेंदो LRK माना लाड़काना स्पेस ॾेई पंहिंजो नालो पंहिंजे ॻोठ जो नालो ऐं पंहिंजो सवाल जो सही जवाब लिखी करे 888 ते तव्हां सेंड करे सघो था असांजी GFM 88 जी ID आहे असांजो फेसबुक पेज आहे त हुन ते बि सवाल जो सही जवाब मोकिले सघो था ऐं तव्हां सवाल जो सही जवाब असां ॾे मोबाइल जे वसीले कॉल करे बि नोट कराए सघो था असांजो मोबाइल नंबर आहे 0332132288 ॾहें बजे मोबाइल स्टूडियो में आन कंदासीं असां तव्हांजे सवालनि जा सही जवाब बिल्कुलु लिखंदासीं असांखे तव्हांजे जवाब जो इंतज़ारु ओसियल रहंदो

साईं जा असां तव्हांखे वरी अगस्त महीने जी अॼु 31 तारीख़ आहे यानी आख़िरी तारीख़ आहे अगस्त महीने जी। अगस्त महीने जे हवाले सां असां अव्हां ताईं थोरी मालूमात पहुचाईंदासीं, कुझु दोस्तनि जी मालूमात में इज़ाफ़ो थींदो। त साईं मुंहिंजा अगस्त महीने जे हवाले सां कुझु मालूमात इहा बि आहे त 4 अगस्त 2000 ते यानि कचहरी जो मोर फनकार महमूद सिद्दीक़ जो विछोड़ थियो ऐं 4 अगस्त 1967 ईस्वी ते नौजवान शायर ज़ाहिद दारा अबड़ो यानि दारा हुन जो लक़ब हुयो, तख़ल्लुस हुयो, ज़ात जो अबड़ो हुन जनम वरितो ऐं 4 अगस्त 1991 ते नौजवान शायर इरफान महदी जो लाॾाणो थियो। ऐं साईं जा अगस्त जेको महीनो आहे ईस्वी साल जो 8 महीनो आहे ऐं हिन अगस्त महीने ते उहो नालो मशहूर रूमी हुकुमरान अगस्टस जे नाले ते पियो ऐं अगस्टस जी लफ़्ज़ी माना आहे धाना। हिन महीने दौरान उत्तर अधु गोल में ॾींहं नंढा थींदा आहिनि ऐं उन जे बरकस ॾखण अधु गोल में ॾींहं वॾा थींदा आहिनि। हिन महीने में मींहं बि वसनि था ऐं हिन महीने में 31 ॾींहं थींदा आहिनि। त साईं मुंहिंजा इहा अगस्त महीने जी मालूमात हुई त हुन जो नालो कीअं पियो, मशहूर रूमी अगस्टस मशहूर जेको आहे हुकुमरान हुयो उन जो नालो हुयो जंहिंजे करे अगस्त नालो हुन ते पियो। त हीअ मालूमात तव्हांखे ॾिनीसीं, हाणे वरी हिकिड़ो ख़ुशि नगम ॿुधूं पिया अव्हां इनाम पिया कयूं।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।

0: अभी बुधो प्यार जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो। हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: सचल की सरमस्त धरती,
1: फातिया मेहरान सिंध की एक और पहचान,
0: GAFM 88 नेटवर्क
1: सिंध की आवाज़।

0: Lots of fun. Loads of mystery. Only on G Radio Affinity.
1: Network da imam jo mezban Nemat Allah June jo. आज या समय आज 31 अगस्त आहे सुभाणे आहे 1 सितंबर त सितंबर जे हवाले सां थोड़ी मालूमात आहे उहा अवां ताईं पहुचाईंदो हलंदस त साईं मुंहिंजा पंहिंजो सुभाणे जेको 1 अगस्त आहे उन हवाले सां मालूमात आहे त 1 अगस्त सिंध जे उन अण विसरंदड़ किरदार जो जेको नालो आहे उहो आहे सैयद सालिम अहमद शाह ऐं सैयद सालिम अहमद शाह उर्फ़ ॾाॾो फतेह ख़ान जी 8 वर्सी सुभाणे आहे ऐं घणो करे इंसान जे किरदार जो तयन हुन जे जान छॾण खां पोइ ईंदड़ वक़्तु कंदो आहे पर के तारीख़ साज़ माण्हू अहिड़ा बि हूंदा आहिनि जन जे किरदार जो तयन संदन जीअरे वक़्त में ई थी वेंदो आहे विछोड़े बाद त तारीख़ मथन वधीक नाज़ कंदी आहे ऐं साईं जा 1 सेप्टेम्बर सकाफ़त जी हिकु मुकमिल किरदार सैयद सालिम अहमद शाह उर्फ़ ॾाॾे फतेह ख़ान जे विसाल जो ॾींहुं आहे जंहिंजी समूरी हयाती सिंधी ॿोली सिंध जी तारीख़ तहज़ीब सकाफ़त लतीफ़ियात ऐं गायकी जी तशरीह कंदे गुज़ारी सैयद सालिम अहमद शाह 4 अप्रैल 1938 ते हैदराबाद जे भरसां ॻोठ दरिया ख़ान बेग मुग़ल में सैयद दादन शाह जे घर में जनम वरितो ऐं प्राइमरी तालीम खां पोइ अदीब आलम जो इम्तिहान पास कयईं शाह साहब जे ख़ानदान में वॾा शाइर अदीब ऐं आलम थी गुज़रिया जंहिंजी शफ़क़त खेसि ॿोली अदब ऐं सकाफ़त जो शऊर बख़्शियो सैयद सालिम अहमद शाह 4 अप्रैल 1958 ते रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद ऐं कराचीअ जे अनाउंसर अब्दुल लतीफ़ अब्बासीअ जे मशवरे ते रेडियो हैदराबाद सां गंढिजी वियो ऐं रेडियो हैदराबाद ते 40 सालनि ताईं फतेह ख़ान जे किरदार सां कामयाब रहियो सैयद सालिम अहमद शाह आम माण्हूअ खे लतीफ़ जो फिक्र समझाइण में वॾी मदद कई संदन हिकु वॾो कारनामो इहो बि आहे त हिन भिटाई साईं जो समूरो कलाम पंहिंजी आवाज़ में रिकॉर्ड करायो हो हीअ सिंध जो अमर आवाज़ ऐं किरदार 1 सेप्टेम्बर याने सुभाणे जेको ॾींहुं आहे उन ते 2007 में 70 सालनि जी उमिरि में लॾण कयो त साईं जा साईं सैयद सालिम अहमद शाह जे हवाले सां मां ताईं मालूमात पहुचाएसीं ॾाॾे फतेह ख़ान जी कचहरी हलंदी पंहिंजो रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद ते ऐं पीटीवी ते बि प्रोग्राम कंदो हो कचहरी प्रोग्राम उते बि घणो पंहिंजो ॾिठोसीं ऐं रेडियो ते ॿुधोसीं ऐं लतीफ़ खे जेको हुन साईं जन पंहिंजे आवाज़ में शायरी जे रूप खे ॾिनो आहे पंहिंजो आवाज़ त लतीफ़ सरकार जो कलाम ॿुधऊं पिया गॾियल आवाज़ में

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 10:30 AM. This time check is brought to you by.
3: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए। आर्च ब्यूटी क्रीम एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो। आर्च ब्यूटी क्रीम।
4: अभी बुधो प्यार जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
5: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
4: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।

0: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।

या हर इंसान मन हर एहसान मंद इंसान के वो एहसास जरूर तड़पाइन है त जिन जा मिट माइट गुम थी वन था तन मथा शाह न गुजर होंद तकलीफ होंदी परेशानी होंदी उनन जो हिक हिक पल कहीं अजाब का घट न होंद ए तरफ इज्जत भोगींदा हूंदा उन करे 30 अगस्त ते पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में गुम थी वल माण्हुनि ऐं हिरासत में वरतल माण्हुनि जो आलमी ॾींहुं मल्हाईंदा आहिनि। हिन ॾींहुं पहिरियों भेरो लातीनी अमरीका जे मुल्क स्टारिका में खुफ़िया हिरासत में जे ख़िलाफ़ कम कंदड़ हिकु तनज़ीम पारां सन 1981 ईस्वी में मल्हायो वियो, जिन खां पोइ ही ॾींहुं हर साल 30 अगस्त ते मल्हायो वेंदो आहे। त साईं जा वाकई अहिड़ा माण्हू जेके गुम थी वेंदा आहिनि या अहिड़ा माण्हू जेके गुम कया वेंदा आहिनि ऐं जंहिंजे घर मां उहे माण्हू गुम हूंदा ऐं हिकड़ो माण्हू वफ़ात करे वञे थो, हिकड़ो माण्हू ही दुनिया छॾे वञे थो त चवंदा आहिनि त उहो हिकु सूर आहे। पर जेको माण्हू गुम थी वञे थो पर जेको ॿारड़ा नंढड़ा ॿारड़ा बि गुम थी वेंदा आहिनि ऐं न लभंदा आहिनि त उन्हनि जो सूर सॼी ज़िंदगी न वेंदो आहे। इहो उन अबेमण खां पुछो, इहो सूर उन पंहिंजो वालदेन खां पुछो, मिट माइट खां पुछो, जंहिं चवंदा आहिनि त हंधु उहो सड़े जिते बाहि भरे, छो त जंहिंजा जिगर पाण खां परे हूंदा आहिनि ऐं सॼी ज़िंदगी उहे नाहिनि मोटंदा, गुम थी वेंदा आहिनि या गुम कया वेंदा आहिनि। पर ख़ासि करे असां वरी ॻाल्हि कंदासीं नंढड़नि ॿारनि जी, जेके वीचारा बेसमझ हूंदा आहिनि ऐं जेको आहे सो उन्हनि जी का उमिरि न हूंदी आहे, गुलनि जहिड़ा ॿारड़ा हूंदा आहिनि जेके वीचारा गुम थी वेंदा आहिनि, न लभंदा आहिनि, के वीचारा किरी पवंदा आहिनि किथे पाणीअ में, कंहिं गटर नालीअ में, या बहरहाल कंहिंखे को नांग भला खाई वेंदो आहे, कंहिंखे को कुतो बिलो चके विझंदो आहे। त कोशिशि कयो पंहिंजे ॿारनि जी हिफ़ाज़त कयो त बहितर आहे। पर गुम थियल ॿार ऐं गुम थियल माण्हू ऐं गुम कयल माण्हुनि जो जेको अहसास आहे उन्हनि खे थींदो आहे जंहिंजे घर जा भाती हूंदा आहिनि।

ही रखी है और ड्राई कीजिए बिल्कुल सेफली। तफल खुदा खैरिये दे मौजूद आ तवक्कल खुदा खैरिये दे मतलब वो तमाम तो लोग जो कि इस वक्त हमें ड्राइविंग करते वक्त सुन रहे हैं, चाहे आप बस में हैं, ट्रक में हैं, रिक्शा में हैं, कार में हैं, बाइक में हैं, जिस पे भी जहां भी जा रहे हैं आपको कहेंगे हैव अ सेफ सेफ जर्नी। बट लेट द नेवर अपनी गाड़ी और अपने गुस्से की स्पीड को हमेशा अपने कंट्रोल में रखिए और ड्राइव कीजिए बिल्कुल सेफली। बफर खुदा खैरिये दे मौजूद और तवक्कल खुदा खैरिये।

वो लोग जो लोग यहाँ सालगिरह है उनको कहेंगे मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे हैव अ गुड टू यू. उसके अलावा वो लोग जो कि बीमार हैं उनको कहेंगे गेट वेल सून. और वो लोग जो कि लाइफ में कुछ अच्छा कुछ बेटर कुछ बड़ा कुछ नहीं कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं तो विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक. बहुत सारी बेस्ट विशेज आप लोगों के लिए कि आप अपने हर काम में कामयाब होते रहें. आमीन. इसके अलावा मेरी आवाज जिन गलियों और शोबारों शहरों शराह बानी और पहाड़ों दरियाओं और मरगुजारों घरों और बाजारों छोटी बड़ी कारों मेरे बुलिस्तारों या करोड़ों हजारों में सुनी जा रही है. तमाम सुनने वालों को चाहने वालों को मोहब्बत करने वालों और नफरत करने वालों को भी दिल से कहेंगे गुलजार है. रियाम में हमेशा की तरह बहुत कुछ है सुनने को सुनाने को समझने को समझाने को सीखने को सिखाने को बोलने को बुलवाने को और सारी बातें जो कि आप मुझसे करना चाहते हैं वो सारी बातें मैं आपसे करूंगी. लेकिन उससे पहले हम प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे प्रोग्राम में प्रोग्राम का पहला गाना सुनेंगे एंजॉय करेंगे और आगे चलेंगे. स्टे ट्यून्ड.

ओके जी प्रज्ञा, मैं आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं 3 तरीके का से, आप मुझे सिंपली मैसेज कर सकते हैं। सिंपली मैसेज करने के लिए अपना मोबाइल उठाइए, राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, SKR टाइप कीजिए, इस पेज मुझे मैसेज टाइप कीजिए, सेंड कीजिए 8881 पे। कमेंट करने के लिए हमारा फेसबुक पेज है, दैट इज www.facebook.com/3FM88K पेज के ऊपर आपको मिलती है पोस्ट जिंदगी गुलजार है कि, उसके नीचे आप लोग कमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोग मुझे कॉल भी कर पाएंगे, तो कॉल करने के लिए हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 03000113488।

इसी के साथ हम प्ले करते हैं एक और ब्यूटीफुल सॉन्ग और इसी के साथ हम जाएंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक की जानिब. आपने कहीं नहीं जाना, मेरा साथ देना है क्योंकि आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है.

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।
2: It's 11:30 AM. This time check is brought to you by.
3: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए। आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो। आर्च ब्यूटी क्रीम।
4: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार है, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।

0: ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुजार है, आप मुझे कहते हैं आरजे रुखसार, आपका मेरा साथ पूरे पूरे 1 बजे तक का है. आप लोग अब मुझे कॉल कर सकते हैं जी 03000113488 के ऊपर. और हमारा सेगमेंट है जी सर लगाओ गाना सुनाओ, और सर लगाओ गाना सुनाओ में आप लोग मुझे कर सकते हैं ज्वाइन कॉल करके. सो कॉल लेने जा रहे हैं हम शो की फर्स्ट, चेक करेंगे गाना गाने से. हेलो, ओके जी, आवाज नहीं आ रही है मुझे. और ये आवाज क्यों नहीं आ रही है ये थोड़ा सा मुझे अब पता चला है क्यों नहीं आ रही
1: है.
0: ओके जी, हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
2: आपसे सलीचा कर लाड़ जाना से आप

0: ओके जी, साथ साथ हम कॉल्स लेते हैं आप लोगों की 03000113488 के ऊपर. नेक्स्ट कॉलर, हेलो. हेलो, वालेकुम अस्सलाम. कौन बात कर रहे हैं कहाँ से?
1: हाफिज लखमीर बात कर रहा हूँ.
0: हाफिज लखमीर भाई, कौन सा गाना सुना रहे हैं हमें?
1: बस कोई शायर की तो होगा जो सुना रहे हैं.
0: सुना दें फिर.

0: हाल में एक मंजिदा हुए काली मंजिदा हुए आपके।
1: ये सिंगर क्या है और टाइटल क्या है गाने का?
0: ये शुभम जिगाड़ी का सिंगर है और टाइटल है काले रंगदा हुए या बुरे रंगदा हुए।
1: सॉरी आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन आ रहा है, थोड़ा सा सही से बताएं प्लीज।
0: जी ये मतलब टाइटल है काले रंग दा हुए या बुरे रंग दा हुए बस होवे वफा वाला बिना हाल में इश्क मलंग दा।
1: ओके जी थैंक यू सो मच। और कुछ कहना चाहेंगे?
0: हमारे दोस्त से सलाम देने का। कंवल साहब सुन रहे हैं, यहाँ पे मुरु साहब सुन रहे हैं और मोहम्मद कासिम साहब और शमी साहब और सरदार दो मुख्तार जो भी सुन रहे हैं उनको सलाम। लेकिन ये गाना जो है प्ले जरूर करना, मेरे पहले वाला गाना भी।
1: ओके जी अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।

0: ये सक्कर FM 88
1: सक्कर की आवाज।
2: अजरा बहन,
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
4: अपना शहर, अपना घर, मटियारी और मटियारी की आवाज
5: GFM 91.6।

0: सुना दें। ओके जी, भाई की कॉल ड्रॉप हो गई है। अब भाई ने ये बोलना कि आपने की और ये मैंने नहीं की है, क्या किया जाए। अच्छा नेक्स्ट कॉलर, हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं?
1: अली मोहम्मद बात कर रहा हूँ।
0: अली मोहम्मद भाई, क्या हाल चाल?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं, बिल्कुल मैं ठीक हूँ। आप सुना, कैसे हो?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गाना सुनाना है?
1: सुनाऊं गाना?
0: बिल्कुल सुना दे अच्छा सा।
1: तमाम उम्र तुझे जिंदगी का प्यार मिले, तमाम उम्र तुझे जिंदगी का प्यार मिले, तमाम उम्र तुझे जिंदगी का प्यार मिले।
0: ओके,
1: नाई बत्तर की आवाज में है।
0: ओके जी, थैंक यू सो मच अली मोहम्मद भाई। और कुछ?
1: राम दिल के सलाम को दुआएं और आपके लिए बहुत सारी दुआएं, मौला आपको सलाम।
0: थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज जी। और साथ साथ हम गाना प्ले करेंगे जी, और गाना मुझे मिल चुका है, आई गेस यही वाला है, तो सुनेंगे, एंजॉय करेंगे और आगे चलेंगे। और गाना हमारा हो रहा है प्ले, और जब भी हम ऐसा कुछ प्ले करने जाते हैं या करते हैं तो बिल्कुल थोड़ी सी देर लग जाती है, लेकिन हो जाता है।
2: तमाम

बाकी साथ साथ आज के टंग ट्विस्टर भी बताऊंगी. आज का टंग ट्विस्टर, जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला, ये कहेंगे जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला. ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रखना और बिना कंफ्यूजन के कहना है. अगर बिना कंफ्यूज हुए कहेंगे तो अच्छे तरीके से टंग ट्विस्टर कह पाएंगे. तो उसको प्रैक्टिस करना अब आप शुरू करेंगे और हम चलेंगे एक और सॉन्ग की तरफ. और सॉन्ग के साथ हम जाएंगे न्यूज ब्रेक फॉलोड बाय कमर्शियल ब्रेक. स्टे

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
2: It's 12 PM. This time check is brought to you by
3: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
4: Jaldi allergy aur kharish ke liye mufeed hai.
3: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
4: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
5: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
6: Brought to you by
7: Sona Yulia Granular.
8: Drone MQ-9 KB kehrayo gayo hai.
9: ईरानी बेट लार्क के तबाह कर छो है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान ते हमले की तस्दीक कदे है त ईरानी बेट लार्क के तबाह किया। ईरानी सदर मसूद पज़िशान है त खिते में बदअमनी अदम इस्तेहकाम कें भी मफाद में न आए। तहरान जंग नथो चाहे पर जारियत जो मोटर जवाब दिनो वेंदो।
8: ईरान जंग अमेरिका के थकाए विधो। अमेरिकी फौजी क्यादत ट्रंप इंतजामिया के खबरदार कर छो। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट पेंजी एक रिपोर्ट में जाना है त ईरान खिलाफ फौजी कार्रवाई के ब्रेक दिनी वही है। अमेरिकी फौज मजबूत जंग सलाहियत मुतासिर थी सके थी। अमेरिकी फौजी क्यादत मूजिब ईरान से 6 महीने का जारी जंग फौजी वसीलन से वो बार बन चुकी है। एक ही तकरार में फोर्सिस के मसरूफ रखने से अमेरिकी अस्करी सलाहियत के खतरा थी सकन था।
9: सिंध असेंबली जो आम इजलास अज थ नवन सूबन इंतजामी यूनिट से बहस लाए पीपी सिंध के सदर निसार खोड़ो पारा पेश कल रिथ से बहस किया वेंदो।
8: बलूचिस्तान में भारतीय फितने खिलाफ फोर्सिस जो ऑपरेशन ब दहशतगर्द मारजी वया। सिक्योरिटी जरिये मौजूद बलूचिस्तान के इलाके वाश्क में दहशतगर्दन की मौजूदगी वारे इतला से फोर्सिस ऑपरेशन किया जैं दौरान ब दहशतगर्द मारजी वया। मारजी वयल दहशतगर्दन पुलिस स्टेशन कस्टम हाउस से हमले में मुलविस हुआ।

लखी गुलाम छावे जो पीउ कारण इल्ज़ाम हेठ धीअ ऐं नौजवान खे क़तल करे छॾियो। जवाबदार गिरफ़्तार। ॻोठ महमूदाबाद में जवाबदार अब्दुल्ला सुमरो बुछरा अल्ताफ़ सुमरे खे क़तल कयो। इतलाह ते पुलिस वाके वारे हंधि पहुची जवाबदार अब्दुल्ला सुमरो खे गिरफ़्तार करे वरितो। कारण इल्ज़ाम हेठि क़तल थियल जोड़े जा लाश इस्पताल मुंतकिल।

कराची जे डिफेंस वारे इलाइक़े में औरतन जे झेड़े वारो मामलो सिंध हाई कोर्ट ताईं पहुची वियो। तशद्दुद जो शिकार औरत ऐं संदसि भाउ तशद्दुद कंदड़ औरत पारां दाख़िल करायल केस ख़तम कराइण लाइ सिंध हाई कोर्ट में दरख़्वास्त दाख़िल कराए छॾी। दरख़्वास्त में चयो वियो आहे त दरख़्शां थाणे ते मरियम रज़ा जे मदद में दाख़िल FIR ग़लति कूड़ी ऐं गैरक़ानूनी आहे। केस ख़तम कयो वियो। DIG ॾखण बे ॿिन्ही धुरियुनि खे अॼु पंहिंजे ऑफिस तलब कयो आहे।

0: जेड़े दौरान फायरिंग के नतीजे में नौजवान अली हसन जमाली मौके से मारिज वे। मकतूल के वारसन जो चवण है तो रजब जमाली के धुर नौजवान के कतल किया है। पुलिस जो चवण है तो धुरन में पुराने तकरार तां थियल जेड़े में नौजवान मारिज वो है जांच कर रहा आयो।
1: नवन सूबन ते बहस लाए सिंध असेंबली में रिट पेश करण खिलाफ दादू में वकीलन पारां अदालती कार्रवाई जो बायकाट। चैनी तालकन में अदालती कार्रवाई जो बायकाट कयो वयो। दादू जोई मेहड़ ए केन शाह में अदालती कार्रवाई जे बायकाट सब मानू वापस मोटी वया। दादू बार जे सदर

0: ताह जो चवणा त सिंध हिकु आहे हमेशा हिकु रहंदी।
1: गड़ी खेरो वेझो हथियार बंदन जी मज़दा ड्राइवर खां फुरलुट जे यू आई जो बदमनीअ ख़िलाफ़ धरणो। जाड़ावा वटि हथियार बंदन मज़दा ड्राइवर माशूक ऐं नियाज़ बबर खां फुरलुट करे फरार थी विया। वधंदड़ बदमनीअ ख़िलाफ़ जे यू आई पारां सिंध बलोचिस्तान रोड ते एहतजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो आयो। नारे में गैस कंपनी पारां इलाइक़े में बुनियादी सहूलतूं न ॾियण ख़िलाफ़ छटरबंद हड़ताल ऐं रैली कढी वई। हारी कमेटी ऐं जीएसएन क़ौमी महाज जे सॾ ते चूंडको शहर में छटरबंद हड़ताल करे एहतजाजी रैली कढी वई। अॻवाणनि चयो आहे त नारे तालुके में सावण गैस फील्ड ऐं कादनवारी गैस फील्ड तरक़ियाती कम नथी कराए।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
2: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
3: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, GAFM की आवाज।
2: GAFM नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow, Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
4: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

Okay, जी वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है. मुझे कहते हैं आज ये रुकसा है आपका मेरा साथ पूरे पूरे एक बजे तक का है. एक और ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं. हमारा सेगमेंट है जी बोलो तो माने, और बोलो तो माने में टंग ट्विस्टर आप लोग कह के दिखाएंगे. और वो जो टंग ट्विस्टर है वो कुछ इस तरीके से होगा कि आप लोग कहेंगे जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला, ठीक है, ये कहेंगे जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला. जो बंदा ये ज्यादा से ज्यादा सही सही बोलेगा वो विन करेगा हमारे सेगमेंट को.

0: ब्लॉगिंग सेगमेंट के फर्स्ट कॉलर ऑन द कॉल लाइन पे मौजूद है। हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं?
1: मोहम्मद अली मुजन।
0: ओके, पहली दफा कॉल कर रहे
1: हैं? नहीं, पहली दफा कॉल नहीं कर रहे।
0: ओके, प्रोग्राम सुन रहे हैं?
1: जी बिल्कुल सुन रहा हूँ।
0: टंग ट्विस्टर सुनाए, बोलेंगे?
1: ये हमारे को नहीं आते।
0: ये नहीं आता तो फिर क्या आता है आपको?
1: हमारे को कोई गाना सुना, बहुत अच्छे
0: वाला। चलें गाना सुनाते हैं जी, और मेक श्योर के इस सेगमेंट में वही लोग कॉल करें जो कि टंग ट्विस्टर बोलेंगे या जो टंग ट्विस्टर बोलना चाहते हैं या बोलना जानते हैं। ठीक है, तो वही लोग कॉल करें 03000113488 के ऊपर। आप लोगों की बहुत सारी लाइव कॉल्स को एंटरटेन करेंगे हम। अगर गाना भी चेंज करेंगे साथ, लेकिन पहले कॉलर। हेलो,
2: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से?
2: अजी कुर्बान अली कास्केली को गाना है, गोट राजी गुलाम कास्केली लगी झंडो मरीगा।
0: कुर्बान भाई टंग ट्विस्टर सुनाए, बोलेंगे?
2: यो वाली तो रिपीट के जगह चौरा।
0: जिस ताली की चाबी उस चाबी का ताला,
2: ये गाड़ी की चाबी,
0: गाड़ी की नहीं, जिस ताली की चाबी उस चाबी का ताला।
2: ये ताली की चाबी से ताली का चाबा।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, जिस ताली की चाबी उस चाबी का ताला। कॉल कट गई, वेरी बैड। एक और कॉलर लेंगे 03000113488 के ऊपर। आप लोग की कॉल्स बहुत सारी और

0: Okay, next caller. Hello, assalamu alaikum.
1: Hello. Hello.
0: Hello.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam. Kaun kahan se?
1: Main Larkana se.
0: Larkana se kaun?
1: Main Jamila.
0: Tehmina. Ab main bolti rahengi to mujhe thodi pata chalega aap kaun hai jab tak aap naam nahi batayengi. To Tehmina, kaisi hain aap? Theek hain?
1: Ha, theek hu. Aap theek ho?
0: मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. प्रोग्राम सुनती हो तहमीना?
1: हाँ मैं सुनती हूँ.
0: तहमीना का मतलब क्या है वैसे?
1: है?
0: तहमीना का मतलब क्या है?
1: मेरा मतलब?
0: हाँ, आपके नाम का मतलब क्या है?
1: कोई भी मतलब नहीं है.
0: कोई भी मतलब नहीं है? मतलब कोई मतलब होता है ना नाम का, जैसे अब मेरा नाम ही रुखसार, तो मेरे नाम का मतलब
1: है मुझे.
0: मेरे नाम का मतलब पता है?
1: हाँ.
0: अपने नाम का नहीं बता. चले खैर, कोई बात नहीं. तहमीना, मुझे ये बताओ कि टंग ट्विस्टर बोलना है? सुना है टंग ट्विस्टर?
1: हाँ, टंग ट्विस्टर यार बोलना नहीं है.
0: बोलना नहीं है? क्यों नहीं बोलना? ट्राई तो करें.
1: नहीं हो रहा है.
0: ट्राई तो करें. सारे सुनने वाले कहेंगे तहमीना को तो आता ही नहीं है, तहमीना से तो होता ही नहीं है, तो फिर मैं क्या कहूंगी? हाँ
1: अच्छा.
0: हाँ
1: हाँ
0: तो बोले ना. हेलो तहमीना. तहमीना किधर? हेलो. ओके, तहमीना भाग गई. लेकिन बुरी बात है, भागना नहीं चाहिए. 0300011348 के ऊपर एक और कॉलर. हेलो.
2: हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. कौन कहाँ से?
2: जी वफ़ा.

0: वालेकुम अस्सलाम सरदर्द, क्या हाल चाल?
1: बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए कैसे।
0: मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ये वो वाहिद कॉलर है जो हमेशा इसी सेगमेंट में कॉल करती है और इसी सेगमेंट के लिए आती है और हमेशा विन भी करके जाती है ना सरदर्द?
1: बिल्कुल
0: है ना। तो कितनी मतलब के अच्छी बच्ची है सरदर्द,
1: देख रही ना मैं कितनी अच्छी बच्ची हूँ।
0: चलो फिर इसी बात पे टंग ट्विस्टर बोल दो। ओके स्टॉप, हमारे पास वो ऑप्शन आता है ना 2x पे लगा के सुनने और देखने का। मुझे लग रहा है सरदर्द तुम्हारी

0: सिर्फ थोड़ा सा, ठीक है. और हम नेक्स्ट गाना प्ले करेंगे. एंड नेक्स्ट गाना मेरे पास होगा ये वाला जो कि हम सुनेंगे, इंजॉय करेंगे. और इसी के साथ हम एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक की तरफ भी जाएंगे. स्टे ट्यून्ड, जिंदगी गुलजार है.
1: यार शमान, दीस टू आर फाइटिंग अगेन, वी नीड टू डू समथिंग अबाउट.

0: It's 12:30 p.m. It's 12:30 p.m. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम.
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं. इसीलिए सोना लाया है NPS. फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले. इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा. 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले.
3: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज.
4: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
3: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो.

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: GA FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: Yogi ji, welcome back once again. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, मुझे कहते हैं आर जी रुखसार, आकर मेरा साथ पूरे पूरे एक बजे तक का है. आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं प्रोग्राम में कॉल्स के थ्रू, क्योंकि हमारा सेगमेंट है जी बोलो तो माने, और बोलो तो माने हुए टंग ट्विस्टर है आज का, जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला. ठीक है, ये बोलेंगे और जो बंदा ये ज्यादा सही सही बोलेगा वो विन कर जाएगा हमारे सेगमेंट को. ठीक है, तो ये करेंगे हम अपने भी आजमाएं, और इसी के साथ हम गाना भी चेंज करेंगे एंड द सॉन्ग इज वेरी ब्यूटीफुल जो कि हम प्ले करेंगे और साथ में कॉल्स भी रिसीव करेंगे. सो कॉलर नेक्स्ट. हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से?
1: SRH रोड़ी से.
0: SRH टंग ट्विस्टर से ना बोलेंगे,
1: रिपीट करना एक बार.
0: जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला.
1: गलत बोल गए.
0: जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला. चाबा नहीं है, चाबी है.
1: जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला, जिस चाबी की ताली उस चाबी का ताला, जिस
0: नहीं. ताला चाबी और मतलब गलत हो रहा है आपका.
1: जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला.
0: यस,
1: जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला, जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला, जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला.
0: चले, अच्छा था. और कुछ कहेंगे?
1: बस
0: ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू.
2: जुदाई मुलाकात की उम्मीद में हम जाना
0: उस ताले का चाबा.

0: बिजी है सर।
1: चाबी के साथ सर शाबा भी मार्केट में आ गया। वाओ,
0: हम ना मिल सके।
1: अच्छा नेक्स्ट कॉलर लेंगे हम। हेलो,
2: वालेकुम अस्सलाम बाजीर सर, कैसी हो? ठीक हो?
1: मैं ठीक हूँ। कौन बात करें, कहाँ से?
2: मोहम्मद आलम बात कर रहा हूँ, बाजीर सलाम कमरा।
1: मोहम्मद आलम पहली दफा कॉल कर रहे हैं?
2: नहीं नहीं, दूसरी बार कॉल करिए। पहले बार कही थी तुम्हारे प्रोग्राम में, जिंदगी गुजार है।
1: चलिए जबरदस्त। अच्छा मुझे बताएं, टंग ट्विस्टर सुनाए, बोलेंगे?
2: सुना तो है, बोल नहीं सकता।
1: बोल नहीं सकते? क्यों बोल नहीं सकते? बोलना नहीं आता आपको?
2: बोलना आता है बाजी।
1: तो फिर
2: बस ये टंग ट्विस्टर थोड़ा भारी है।
1: भारी है? भारी तो नहीं है, वजन तो है ही नहीं इसमें।
2: वजन है तालो और चाबी है ना।
1: वाह, क्या क्या लॉजिक निकाला है आपने। वैसे और कुछ कहेंगे?
2: बस जो सुन रहे हैं उसके सलाम, आपको सलाम, तुम्हारे टीम को सलाम। ओके, अल्लाह
1: हाफिज़। थैंक यू। गाना सुनेंगे, एंजॉय करेंगे और गाने के साथ साथ आगे मूव करेंगे। आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है।

0: सक्कर FM 88 सक्कर की आवाज।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले। पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं।

लिखा है कि जी आज ही सॉन्ग सुनाओ फाइजा अली का, डेडिकेशन हेनरी खान, आमिर खान, मोहम्मद रिजवान को. ओके. और इसके अलावा जी गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, योर शो इज वेरी नाइस. अल्ताफ अली गढ़ी बलोच हमारे से मौजूद है कराची से, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. और इसी के साथ फाइनली हम प्रोग्राम को रैप अप करेंगे. आज के बोलो तुम्हारे सेगमेंट के दो विनर्स हैं जी, एक तो हैं एज ऑलवेज सरदर्द और उसके अलावा एस आर एच, ये दोनों आज के बोलो तुम्हारे सेगमेंट के विनर्स हैं. तो इसी के साथ फाइनली मैं लूंगी आपसे इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिये. दिस इज मी आर जी रुखसार, साइन आउट, टेक केयर, गुड बाय, अमान खुदा, अल्लाह हाफिज.

रुपया पैदा थियण जो इम्कान ॾेखारियो वियो। आईटी सिटी लाइ 425 एकड़ ज़मीन नोटिफाई बि थी वई। वधीक 625 एकड़ ज़मीन ॾियण जी मंज़ूरी वारो अमल बि जारी। मनसूबनि जी बाज़ाबता इफ़्तिताह जी तक़रीब जल्द मुनक़िद थियण जो इम्कान। सिंध काबीना मलीर ज़िले में एजुकेशन सिटी खे वधीक 5987 एकड़ सरकारी ज़मीन ॾियण जी गुजगोह में मंज़ूरी ॾेई छॾी। डॉक्टर आसिम हुसैन जी दरख़्वास्त ते मलीर ज़िले जे देहे कोठड़ो में 4000 एकड़ ज़मीन ॾिनी वई। देहे डाउंड में 925 एकड़, देहे जोड़जी में 500 एकड़ ऐं देहे आबादार में 562 एकड़ सरकारी ज़मीन एजुकेशन सिटी लाइ ॾिनी वई। 5987 एकड़ ज़मीन में मालियत 150 अरब 43 करोड़ रुपया आहे, जेको फ़िलहाल सिंध हुकूमत जो नाणो खातो भरींदो। सेनेट कमेटी जो पिंज अस्पताल में ख़ुसूसी इजलास। कमेटी मेंबर ऐं सिहत वारो वफ़ाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल बि इजलास में शरीक। कमेटीअ खे पिंज साने ऐं खयल क़दमनि बाबति ब्रीफिंग ॾिनी वेंदी। कमेटी चेयरमैन चयो आहे त अहिड़ियूं तजवीज़ूं ॾियण चाहियूं था जंहिं सां अहिड़नि साननि खे रोके सघिजे। बलोचिस्तान में भारतीय फितने खिलाफ़ फोर्सेस जो ऑपरेशन ब दहशतगर्द मारिजी विया। सेक्रेटरी ज़रीन मूजिबि बलोचिस्तान जे

0: जारी आहे. ऐं सिंधी फिल्मनि जो हिदायतकार ऐं अदाकार गुलाम हैदर सिद्दीकी 99 सालनि जी ॼमार में लाॾाणो करे वियो. गुलाम हैदर सिद्दीकी सिंधी फिल्म घूंघट, लाह कुंवार, बादल, अलबेले ऐं धरती दिलवारनि जे डायरेक्शन ॾिनी. हिन केटीएन ऐं पीटीवी ते केतिरनि ई ड्रामनि जी हिदायतकारी कई.
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज.
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है. सुनते रहो GAFM 91.6.
3: ये सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ. इसके हर दाने में

0: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
1: GFM 91.6
2: सिंध की आवाज।

जी लाड़काना FM.8 हमारा पेज है जनाब, और जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आराम से हमारा पेज मिल जाता है। वहाँ पर आप जैसे ही आएंगे तो आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिल जाएगी, जैसे आप लाइक करेंगे शेयर कर देंगे, और अगर ये दोनों काम आप करते हैं तो क्या ही बात है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और जल्दी से पोस्ट को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और बताइए आप भी हमारे साथ मौजूद हैं फेसबुक पर। और जितने भी प्यारे प्यारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं सभी को वेलकम कहा जाता है। आपने क्या करना है, आपने बस टॉपिक को फॉलो करना है और बताना है कि आप भी हमारे इस खूबसूरत से प्रोग्राम का हिस्सा हैं, और अगर आप कोई अच्छा सा प्यारा सा गाना सुनना चाहते हैं तो वो भी बता देंगे, क्योंकि आपकी पसंद के गाने भी लगाए जाते हैं जी प्रोग्राम के अंदर। तो क्या सोच रहे हैं, जल्दी से प्रोग्राम का ऐसा बनिए और मुझे बताइए वो कौन सा जानवर है जिसके दूध से दही नहीं बनती। हाँ जी हाँ जी, बताइए मुझे। और इसी के साथ साथ यहाँ पर टाइम हो जाता है जनाब, लेते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, और शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानब जाएंगे, उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आएंगे। तो आप अच्छी से जानते हैं आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहेंगे और सुनते रहेंगे और हमारा साथ देंगे पूरे पूरे 3 बजे तक। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ, सो स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग GFM 88 नेटवर्क। आप सुन रहे हैं चलते के नाम, सुनते रहेंगे पूरे पूरे 3 बजे तक। तो साथ रहिए और साथ दीजिए।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: ये वादा है तुमसे ना याद करे।
0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GAFM 88 नेटवर्क ते।
3: अभी बुधो प्या GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
4: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
3: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

जी वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास। आप सुन रहे हैं जीएफएम 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर माथी और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं चलती का नमस्ते। बिल्कुल जी आपके सदराव के साथ मौजूद मेरे साथ कौन है मुझे बताते जाएंगे, अपने होने का एहसास दिलाते जाएंगे। आप हमारे साथ मौजूद है ये मुझे पता होना चाहिए। अगर आप मुझे ज्वाइन करने वाले हैं तो आप मुझे 8881 पर ज्वाइन करेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप फेसबुक पर हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं तो फेसबुक वाली पोस्ट को लाइक और शेयर कर दिया करें ताकि हमें ये पता चले कि आप लोग हमारे साथ फेसबुक पर भी मौजूद हैं। ओके जी, तो आज मैंने आप लोगों से सवाल ये पूछ लिया कि आप बता रहे हैं मुझे वो कौन सा जानवर है जिसके दूध से दही नहीं बन सकती। हाँ जी, दही और नहीं दोनों एक जैसा साउंड कर रहा है। आप मुझे बताएं जल्दी से सवाल का जवाब क्या हो सकता है। अगर आपको टॉपिक आ रहा है तो मैसेज कीजिए। अगर आप वैसे भी मैसेज करने वाले हैं तो टॉपिक को लाजमी फॉलो कर लिया।

गोले और वो तरीके ढूंढ रहे होते हैं कि किस तरह से ये काम किया जाए, किस तरह से किया जाए, और जब उनको और कुछ नहीं मिलता और कुछ आपका नहीं बिगड़ता, उनकी नजर में आपकी इज्जत खराब सा सुकून मिलेगा। लेकिन ये बात कई मर्तबा लोग भूल जाते हैं, अगर आप कितनी लंबी चोरी जो है वो सजा भुगतनी पड़ेगी, अगर इसके बारे में अंदाजा हो जाए तो लोग इतना बचकर चले ना इस जमाने में, इस दुनिया में, कि भाई ये सोच है हमारे। लेकिन लोगों को भाई ये होता है कि भाई आज अच्छा लग रहा है, चस आ रही है, अगले इंसान की जिंदगी खराब कर रहे हैं। लेकिन जब इस चीज का उन्हें एहसास होता है, जब रियलाइज होती है ये तमाम चीजें, तब वक्त भी काफी आगे निकल चुका होता है, चीजें भी हाथ से बहुत ज्यादा गायब हो चुकी होती हैं, और जब एहसास होता है इंसान को तब बहुत देर हो चुकी होती है। तो कोशिश की आखिरी अगर आप इन चीजों में, इन ऐसे कामों में हैं जो कि आपको रियलाइज नहीं होता, भाई आप गुनाह कर रहे होते लेकिन आपको उस चीज का अंदाजा नहीं होता, तो अभी भी वक्त है जनाब, क्योंकि जब आप उस टाइम में आ जाते हैं जब कोई आपके पास ऑप्शन नहीं बचता, आपके पास ये होता है कि भाई पछता रहे हैं लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, तो उससे कई गुना बेहतर है कि आप अभी से जो है वो चीजों को अच्छे से सॉर्ट आउट कर लें और लोगों का ख्याल रखें और हर किसी की इज्जत का ऐसे एहतराम करें जैसे मानो वो आपकी अपनी इज्जत हो। और इसी के साथ साथ जो है यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सा गाना जो कि सारे अली बग्गा की आवाज में होने वाला है और इनके साथ एक खातून है, उनका नाम पता नहीं क्या है, तो हम ये प्यारा सा गाना इंजॉय करेंगे। और उसके अलावा अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो बिल्कुल ज्वाइन कीजिए 881 पर, और फेसबुक पर जितने लोग मौजूद हैं जरा पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए, पता चले आप हमारे साथ हैं।

ओके जी, क्या बात है। यानी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो जब हमारे सामने आ जाती हैं, जब देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि भाई जान लोग ऐसा भी सोच सकते हैं। बिल्कुल जी, लोगों की सोच की तो कोई लिमिट ही नहीं है ना। तो अच्छी बात है, जो जैसा होता है वो अगले इंसान के लिए भी बिल्कुल वैसा ही गुमान और सोच रखता है। तो इस बारे में जो है ना, वो थोड़ा सा मतलब कम सोचा करें। अच्छी दिवाली, ये वापसी जल्दी

0: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 2 p.m. This time check is brought to you by
3: Fakiri Analgesic Cream. दर्द, सोजन, वरम फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
4: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
5: Brought to you by
6: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
4: आप सुन रहे थे, अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
5: Brought to you by
6: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी।
7: सिंध संभल जो आम इजलास कुछ देर में शुरू थियण वारो नवन सूबन इंतजामी यूनिट से बस लाइ पीपी सिंध के सदर निसार खोड़ो पारा पेश कल रिथ बस कयो वेंदो। रिथ खिलाफ वकील भी सिंध संभलिय बाहरा पहुंची वया। पुलिस संभलिय डां ईंदड़ वेंदड़ रोड ब्लॉक कर छड़िया।
8: करप्शन थींदी त नए सूबे जी भी ॻाल्हि थींदी आहे। माण्हू जा मसला हल न थी रहिया आहिनि। सभु इख़्तियार हिकु फर्द वटि आहिनि। मकानी निज़ाम खे मज़बूत करणो पवंदो। सिंध असेंबली में अपोज़िशन लीडर अली खुर्शीद चयो आहे त सूबनि जे क़याम वारे मामले ते बहस वारी रिथ पीपल्स पार्टी आंदी आहे। बहस थियण घुर्जे, कंहिंखे सुठो लगे या न लगे, पर ॻाल्हि थी रही आहे। भुट्टे जे आइन में ई सूबनि जे क़याम बाबति ज़िक्र थियल आहे। अवाम खे मज़बूत करणो पवंदो।
7: वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे ते किर्गिस्तान रवानो। वज़ीर आज़म छिंगाई सहकार कॉन्फ्रेंस खे ख़िताब कंदो। खिते जे सूरत हाल ते आगाह करण सां गॾु अमन ऐं इस्तेहकाम वारनि कोशिशुनि ते ज़ोर भरींदो। वज़ीर आज़म बेशक में किर्गिस्तान क़यादत सां बि मुलाक़ात कंदो।
8: पाकिस्तान सऊदी ऐं तुर्किया जे दिफ़ाई मुआदे बाबति पहिरियों इजलास अॼु इस्तंबोल में थींदो। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, दिफ़ा वारो वज़ीर ख़्वाजा आसिफ़, फील्ड मार्शल सैद आसिम मुनीर इस्तंबोल पहुतल। इजलास में सऊदी अरब ऐं तुर्किया जा परॾेही ऐं दिफ़ा वारा वज़ीर ऐं फ़ौजी सरबराह शरीक थींदा। फील्ड मार्शल ऐं तुर्किया जे सरकारी दौरे दौरान अहम मुलाक़ातूं बि कंदो।
7: कुझु अरसे जी ख़ामोशीअ बाद अमरीका ऐं ईरान जा हिक ॿिए ते हमला। अमरीका जो ईरानी बेट लार्क ते मिज़ाइल हमिलो। ईरान जो जवाब में उर्दन ऐं UAE में मौजूद अमरीकी अॾनि ते वार। आबनै हुरम्स में अमरीकी ड्रोन बि तबाह करण जी दावा। अमरीकी सेंटकॉम चयो आहे त आबनै हुरम्स में बारूदी सिंगू विछाइण वारनि कोशिशुनि रोकण लाइ ईरानी लार्क बेट ते हमिलो कयो। पासदारनि इनकलाब अमरीकी हमलनि जी तसदीक कंदे चयो आहे त अमरीकी हमलनि में केतिरा ई फ़ौजी शहीद थिया आहिनि। हमले जे जवाब में उर्दन ऐं UAE मौजूद अमरीकी अॾनि खे निशानो बणायो वेंदो। आबनै हुरम्स मथां उॾाम कंदड़ अमरीकी ड्रोन MQ-9 खे बि किरायो वियो आहे।
8: ईरानी बेट लार्क खे तबाह करे छॾियो आहे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प ईरान ते हमले जी तसदीक कंदे चयो आहे त ईरानी बेट लार्क खे तबाह कयो वियो आहे। ईरानी सदर मसूद पज़ीशान चयो आहे त खिते में बदमनी ऐं अदम इस्तेहकाम कंहिंजे बि मुफ़ाद में नाहे। तेहरान जंग नथो चाहे पर जारियत जो मुंह टोड़ जवाब ॾिनो वेंदो।
7: ईरान जंग अमरीका खे थकाए विधो। अमरीकी फ़ौजी क़यादत ट्रम्प इंतिज़ामिया खे ख़बरदार करे छॾियो। अमरीकी अख़बार वॉशिंगटन पोस्ट पंहिंजे रिपोर्ट में ॼणायो आहे त ईरान ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्रवाई खे डिघी ॾिनी वई आहे। अमरीकी फ़ौज जी मजमूई जंगी सलाहियत मुतासिर थी सघे थी। अमरीकी फ़ौजी क़यादत मूजिब ईरान सां 6 महीननि खां जारी जंग फ़ौजी वसीलनि ते वॾो बार बणिजी चुकी आहे। हिक ई तकरार में फोर्सिस खे मसरूफ़ रहण सां अमरीकी अस्करी सलाहियत खे ख़तरा थी सघनि था।
8: सिंध हुकूमत मलिर जे एजुकेशन सिटी में ॾेही ऐं परॾेही कंपनियुनि लाइ ICT क़ाइम करण जी रिथाबंदी करे छॾी। 1070 एकड़ खां वधीक ज़मीन ते ITI कंपनीज़ लाइ सनतूं ऐं आबादियूं क़ाइम थींदियूं। ॾेही तोणे परॾेही कंपनियुनि 700 खां 800 मिलियन डॉलर जी सीड़पकारी करण जो वाइदो करे छॾियो। स्पेशल टेक्नोलॉजी ज़ोन में डेटा सेंटर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT डिवाइस, लिथियम बैटरियुनि जा मर्कज़ क़ाइम कया विया। इलेक्ट्रिक गाॾियुनि ऐं ॿियनि जदीद टेक्नोलॉजी सां लाॻापियल सनतनि जे क़याम जा बि मनसूबा शामिल आहिनि। 10,000 खां वधीक रोज़गार जा मौक़ा पैदा थियण जो इम्कान ॾेखारियो वियो आहे। ITI सिटी लाइ 435 एकड़ ज़मीन नोटिफाई बि थी वई। वधीक 635 एकड़ ज़मीन ॾियण जी मंज़ूरी वारे अमल बि जारी आहे। मनसूबनि जे बाज़ाबता इफ़्तिताह जी तक़रीब जल्द मुनक़िद थियण जो

0: on.
1: सिंध काबीना मलीर जिले में एजुकेशन सिटी के 5,987 एकड़ सरकारी जमीन देने की गुजगु में मंजूरी दई छी। डॉक्टर आसिम हुसैन की दरख्वास्त मलीर जिले की ड्रे कोठड़ो में 4,000 एकड़ जमीन डिनी वही। दे वांडो में 925 एकड़, दे जोड़जो में 500 एकड़, दे आबदार में 562 एकड़ सरकारी जमीन एजुकेशन सिटी ला डिनी वही। 5,987 एकड़ जमीन की मालियत 150 अरब 43 करोड़ रुपया है, जेका फिलहाल सिंध हुकूमत जो नाणो खातो भरींदो।
2: वो कढ़ाई से भी फाइट कर लेगा। कौन?
3: ब्राइट।

0: अहिड़नि साननि खे रोके सघिजे।
1: बलोचिस्तान में भारतीय फितने ख़िलाफ़ फोर्सिस जो ऑपरेशन ब दहशतगर्द मारिजी विया। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिबि बलोचिस्तान जे इलाइक़े वाश में दहशतगर्दनि जी मौजूदगीअ वारे इतलाह ते फोर्सिस ऑपरेशन कयो, जंहिं दौरान ब दहशतगर्द मारिजी विया। मारिजी वियल दहशतगर्द पुलिस स्टेशन ऐं कस्टम हाउस ते हमले में मुलविस हुया।
0: नवनि सूबनि ते बहस लाइ सिंध असेंबलीअ में रिथ पेश करण ख़िलाफ़ लाड़काणे ऐं दादू में वकीलनि पारां अदालती कार्रवाइयुनि जो बाइकाट। को बि वकील अदालत में पेश न थियो। वकील अॻु सिंध ख़िलाफ़ साज़िश क़बूल न आहे। सिंध जी जाग्राफ़ीअ सां छेड़छाड़ क़बूल न हूंदी।
1: दादू वेझो ॿिनि धुरियुनि में झेड़े दौरान मारिजी वियल अठनि ॼणनि जो क़तल केस दाख़िल न थियो। इलाइक़े में खौफ़ पकड़ियल रहवासी परेशान। ॻोठ दानो चांडियो ऐं शेख गुलाब वासी चांडिया बिरादरीअ जे ॿिनि धुरियुनि में झेड़े जो केस दाख़िल न थियो। झेड़े दौरान ॿिनि भाइरनि दीदार ऐं गुलबार चांडियो समेत सुल्तान मंज़ूर फिदा ऐं ॿिया मारिजी विया हुआ।
0: लखी गुलाम शाह जो पीउ कारे इल्ज़ाम हेठि धीअ ऐं नौजवान खे क़तल करे छॾियो। जवाबदार गिरफ़्तार। ॻोठ महमूदाबाद बाग जवाबदार अब्दुल्ला सूमरो बुशरा ऐं अल्ताफ़ सूमरो खे क़तल कयो। इतलाह ते पुलिस वाके वारी हंधि पहुची जमूरो खे गिरफ़्तार करे वरितो। इल्ज़ाम हेठि क़तल थियल जोड़े जा लाश इस्पताल मुंतकिल।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
4: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
5: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: सक्कर FM 88
1: सक्कर की आवाज बड़ी जाए क्योंकि काफी सारे जमा हो चुके हैं. उसके बाद जो है ना आप लोगों की तरफ जो है ना आपकी पसंद के गाने भी फेंकूंगी. तो पहले कुछ मैसेजेस पढ़ते हैं. وعلیکم السلام کہتے ہیں آپ کو. آپ پروگرام آپ کو پسند آ رہا ہے. بہت شکریہ. تھینک یو جی. اور محبوب علی ہمارے ساتھ ہیں.

समझे जो गाल के। और मकसूद मला हमें सुन रहे हैं मेहरापुर से, कहती हैं आपका शो सुन रहा हूँ, आपका शो बहुत अच्छा है सदरा मुस्कान। और तो मास्टर मंजूर का गाना सुनाना कोई भी नहीं। समान भाई हमारे साथ है, वेलकम, आपको भी खुश आमदीद कहा जाता है। आपने टॉपिक के ऊपर बात करी है, टॉपिक का जवाब आपका जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। और इरम कहती हैं आप ही मैं दही लस्सी की शौकीन नहीं हूँ, तो जवाब भी मुझे नहीं पता। चलें कोई बात नहीं, वैसे मतलब पहला इंसान देखा है तो दही और लस्सी नहीं खाता वैसे तो सब लोग, या फिर ऐसा होता है मुझे ये लगता है कि जो सिटी के लोग होते हैं ना वही सिर्फ इन चीजों के शौकीन होते हैं, बाकी गांव में देखा जाए तो बाकी गांव के लोग इन चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। वैसे चवना है ना इंसान वडो ना शुक्र आए, बिल्कुल हुआ गाल जो खाने जी अवेलेबल ना है वही बड़ी शौकीन आए, ये थींदो आए बाबा ये थींदो आ। अल्लाह पाक ने कहा है ना भाई इंसान बहुत बड़ा नाशुक्र है, तो यही गाल है बिल्कुल शुक्र का अलावा जो सो ही गानों फायजाली से गाने की फरमाइश मुख्य की।

मतलब गानो आहे अॼुकल्ह ही गानो मूंखे वणे थो. ओके सो गानो एंजॉय कयूं पिया. हुन खां अलावा हमारे साथ इरम कहती है मेरी दिलबर दोस्त, मैं टॉक्सिक नहीं हूं ना ही मैं टॉक्सिक बनूंगी कभी, और मुझे टॉक्सिक लोगों से इतनी बेजारी होती है कि बस क्या बताऊं तुम्हें. वैसे टॉक्सिक आप क्यों बनेंगे, नहीं बनना चाहिए. टॉक्सिक लोग अच्छे नहीं होते, उन्हें कोई भी पसंद नहीं करता, तो बस आप अच्छी इंसान बने ये बहुत जरूरी होगा. और उसके अलावा टॉक्सिक लोग किसी को भी पसंद नहीं आते. और गोट हाची गुलाम खास के लिए, लग झंडो मरी खां कुर्बान अली खास के लिए कहते अवां जो आवाज मिठो आहे. गानो लिखियो आहे शायद तव्हां, सो मां कोशिश कयां थी तव्हांजी पसंद जो गानो हलायूं. और ये मौजूदी वालेकुम अस्सलाम अलैहिस्सलाम मदद फहीम शेख अदा छा हला सफ़ा छा का हा सफ़ा छा का कलम सभु कुझु आहे. तव्हां ॿुधायो कहिड़ी गानो ॿुधायो. गानो बिल्कुलु तव्हांखे ॿुधायूं था, तव्हांजो मोहबतूं आहिनि प्रोग्राम ॿुधो पिया. और कहते दादा नींद आ गई आज इसलिए लेट हो गया, और कल आपने कैसे मना लिया कि मैं शो सुने और SMS ना करो. हाँ वही मैं सोच रही थी, आज आपने थोड़ी लेट करी तो मुझे लगा कि भाई वो आपने बाजरा सीरियसली ले ली. चले आपकी मोहब्बतें होती है कि आप नाराज नहीं होते. वैसे भाई बहनों से नाराज ना ही हो तो बेहतर होता है. भाईर जी कहते ना भेनर की प्यारा हूंदा आहिनि, मूंखे लॻंदो आहे भेनर बि थोरी थोरी भाउनि खे प्यारी हूंदी. ज्यादा ख़्यालु कंदा कयो तव्हां बि.

0: FM 91.6 सुन जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते बसे नूर मुझो तो
0: सुन जो आवाज बुदलदा रहो।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डुंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे नकी कड़ो नहीं।
2: सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
4: अभी बुधो प्या GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
5: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
4: सिंध जो आवाज बुधंदा।

जी बिल्कुल बिल्कुल, वक्त सां सब चीजूं चेंज थी वेंदियूं आहिनि ऐं वक़्त सां इंसान बि चेंज थी वेंदो आहे, इहा सही ॻाल्हि आहे। ऐं हीउ वारो ट्रैक असांजी लिस्ट में आहे, जेके ट्रैक मतिलबु पेंडिंग हुया उन्हनि खे बि असां हलाईंदा वेंदासीं गॾो गॾु, तव्हां इंजॉय कंदा। हीउ मुमताज़ मलई जी आवाज़ में गानो आहे, जेनी फरमाइश असांखे असांजी भाभी करे छॾी हुई। भाभी त मूंखां विसरी वञे पई, सो भाभी गानो इंजॉय कजो। ऐं प्रोग्राम में तव्हां सां गॾु मौजूदु आहे, बिल्कुल जी मैसेज तरफ़ अचां थी, पर थोरो गानो ॿुधी वठो वरी, न त चवंदा सदरा तूं त गानो ॿुधण ई ॾींहुं नथी।

पे हैं बेटा सिद्धू लास्ट सेडी लिंक सी यू टुमारो इंशाल्लाह खैर से जी जी इंशाल्लाह कहते हैं बेटा सॉन्ग की रिक्वेस्ट मेरी भी पेंडिंग है अभी तक हाँ हाँ बिल्कुल चलाएंगे आपकी पसंद का गाना भी थोड़ा सबर कीजिए जरा और ये मौजूद है हमारे साथ गुड आफ्टरनून हाउ आर यू योर शो इज वेरी नाइस दिस इज अल्ताफ अली गादी बलोच फ्रॉम कराची ओके जी अल्ताफ अली गादी बलोच आपको वेलकम कहा जाता है आपने टॉपिक के ऊपर बात करी है जो कि आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है और आशिक अली मल्हा हमारे साथ फ्राम बकड़ अबरो से कह रहे हैं सलाम जी वालेकुम अस्सलाम डेडिकेट नाजिक अली अबरो और तारिक अली अबरो गुलाम मुस्तफा अबरो जी नाले ओके ओके दवा के चौथा भली करी आया और ये हमारे

ओके जी, क्या बात है। और एक और गाना हमारे पास है जी, ये ओएसटी है और ओएसटी की फरमाइश हमें पता नहीं किसने कर दी थी, तो ये वाला गाना भी हम साथ साथ एंजॉय करने वाले हैं। और ये हमारे साथ हैं जी मकसूद मदा, लिखते हैं कि घर वाले कहते हैं तुम गिंदू बदर चले जाओ, मैं क्यों वहां जाऊं, क्या होता है वहां पर, आप उन्हीं से पूछ लेंगे वो आपको क्यों कहते हैं ऐसा, इतना बेजार किया है आपने घर वालों को। आए हाय मत करें भाई।

वैसे ये बात बिल्कुल सही है कि आप उस इंसान को कभी भी नहीं बदल सकते जिस इंसान को अपना बर्ताव गलत ही नहीं लगता, यानी कि जो गलती करे उसे अपनी गलती ना लगे, तो उस इंसान को कभी भी नहीं बदल सकता और कोई भी नहीं बदल सकता। और बाकी जिस इंसान के अंदर ये थोड़ी चीज होती है कि वो गलती करे उसे एहसास हो कि हाँ भाई ये चीज मुझसे गलत हो चुकी है, तो उसके सही होने के चांसेस जो होते हैं ना वो थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जो वाकई गलती करते हैं लेकिन उनको एहसास तक नहीं होता कि ये मैंने गलती कर ली है। और एहसास तो क्या, माफी तो मतलब तभी मांगी जाएगी जब उसके अंदर ये थोड़ा सा एहसास पैदा होगा, लेकिन एहसास पैदा नहीं होता तो माफी कहां से मांगी जाएगी, और माफी नहीं मांगी जाएगी तो समझ सकते हैं क्या हो सकता है। तो बिल्कुल जी, कोशिश किया करें, इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है, तो कोशिश किया करें कि आप अपनी गलतियों से सीखें। और उसके अलावा टाइम जो है वो बड़ी तेजी से गुजरता जा रहा है, हमारी लिस्ट में एक लास्ट ट्रिक अभी बाकी बचता है। और आज जो मैंने आप लोगों से सवाल, कौन सा जानवर है जिसके दूध से दही नहीं बनाई जा सकती, तो उसका सही जवाब ऊंट था, ऊंट। और आप सब लोगों ने तकरीबन मतलब ये है, क्या बात है, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ऐसे ही भाईजान आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते रहिए, और ये प्रोग्राम आप लोगों का अपना है तो होना बहुत ही ज्यादा है। और ये हमारे प्रोग्राम का लास्ट ट्रिक जो कि मैडम आपदा जी की आवाज में है, और बहुत ही ब्यूटीफुल खूबसूरत सा ट्रिक, इस गाने को भी सुनेंगे और साथ ही साथ

पहले से आज आप देर से आए हैं ना प्रोग्राम में, तभी आपको नहीं सुनने को। बाकी बहुत वैसे इजाजत लें आप लोगों से, क्योंकि ये गाना ऐसा है कि इस गाने को बस सुना जाए, तो इजाजत लेते हैं आप लोगों से। वेरी इंटरेस्टिंग ओहा पंचपटी वाले प्रोग्राम में थी, सो ज्वाइन करो, ख्याल रखना। किसी का गलती थी, मुझे तो माजरत कहूँ था, जिन्होंने फीडबैक रही वही जिन्हें गाना रही वह सबने का माजरत कहूँ था। सो मोकलानी ना ही बाबू सिंह, सलामत सलामत, अल्लाह हाफिज, बाय, लव यू ऑल एंड।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क। अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: वज़ा शरीफ सरकारी दौरे ते किर्गिस्तान पहुची वियो। वज़ीर आज़म जो किर्गिस्तान अख़्तियारनि आदर भाव कयो। शहबाज शरीफ किर्गिस्तान में छिंगाई सहकारी कॉन्फ्रेंस के खिताब कंदो। वज़ीर आज़म किर्गिस्तान क़यादत ऐं ॿियनि मुल्कनि जी पाकिस्तान सऊदी ऐं तुर्किया जे दिफ़ाई मुआहिदे बाबति पहिरियों इजलास अॼु इस्तंबुल में थींदो। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, दिफ़ा वारो वज़ीर ख़्वाजा आसिफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर इस्तंबुल पहुतलु।

शिरकत लाइ सऊदी दिफ़ा वारो वज़ीर बि पहुची वियो। त्रिमुल्की इजलास में मका दिफ़ाई मुआदे ते अघु भराई जो जाइज़ो वरितो वेंदो। मका दिफ़ाई मुआदे ते इजलास खां पहिरियों पाकिस्तानी वफ़द जूं तुर्किया जे वारे वज़ीर ख्वाजा अर्शल सैद आसिमुनी तुर्किया जे दिफ़ा वारे वज़ीर सां बेतरफ़न लाॻापन समेत ॿिन्ही मुल्कनि जे क़यादत जो दिफ़ाई

0: 91.6
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंधु जो आवाज।
3: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
2: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: It's 3:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
3: अपना

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क
2: पास।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर दारो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस बड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है एनपीएस 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले फसल भरपूर खिले।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान बधाई।
3: सिंध संभलिय जो आम इजलामी पारां पेश कयल रिथेंदो पुलिस संभलिय ॾांहुं ईंदड़ वेंदड़ रोड बंद करे छॾिया। सूबनि बाबति सिंध संभलिय में पेश कयल रिथ ते आवाम जे सख़्त रद अमल बाद वॾे पीपल पार्टी इजलास 1.5 कलाक खां जारी। ज़रियनि मूजिबि पीपल्स पार्टी पारां ऐवान ऐं पेश कयल रिथ खे करारदाद में तब्दील करण ते गौर। नवनि सूबनि बाबति रिथ सिंध असेंबलीअ में पेश करण ते एमकेएम पीपल्स पार्टीअ जी थोराइती। पीपल्स पार्टी जे अपोज़िशन लीडर अली खुर्शीदीअ चयो आहे त आम माण्हूअ जा मसला मकानी निज़ाम खे मज़बूत करणो पवंदो। एमकेएम जे डिप्टी पार्लियामेंट चयो आहे त नवनि सूबनि ऐं इंतज़ामी यूनिट्स बाबति बहस खे एमकेएम पंहिंजी सियासी कामयाबी समझे थी। अॼु पीपल्स पाण नवनि सूबनि ते बहस कराए रही आहे। एमकेएम जे ॻाल्हियुनि खे संजीदा न वरितो वञे। सूबनि बाबति रिथ आणण जो मक़सद अवाम खे सूबनि जे हामियुनि जा चेहरा ॾेखारण आहे। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह चयो आहे त असेंबलीअ जे फ्लोर ते पहिरें बि अहिड़ियूं ॻाल्हियूं थींदी रहियूं आहिनि। सिंध असेंबलीअ जे स्पीकर चयो आहे त सिंध जे अवाम जे हक़ में सरदार शाह चयो जेको स्पीकर चयो आहे जेको बहितर हूंदो उहो ई थींदो। पाकिस्तान सऊदी ऐं तुर्किया जे दिफ़ाई मुआदे बाबति इस्तंबुल में पहिरियों इजलास। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, दिफ़ा वारो वज़ीर ख्वाजा आसिफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनई का दिफ़ाई शहबाज शरीफ प्यारनि आदर बाग कयो। शहबाज खे ख़िताब कंदो वज़ीर आज़म किर्गिस्तान क़यादत ऐं ॿियनि मुल्कनि जे वफ़दनि सां बि मुलाक़ात कंदो। कुझ अमरीका ते इराक ते मिज़ाइल हमिलो। यूएई आबनायरन ऐं अमरीकी ड्रोन बि तबाह करण जी दावा। अमरीकी सेंटकॉम चयो आहे त आबनायरन में बारूदी सिंगू विछाइण वारी कोशिशूं रोकण लाइ ईरानी लार्क बेट ते हमिलो कयो। वधीक कंदे चयो आहे त अमरीकी हमले में केतिरा ई फौजी शहीद थिया आहिनि हंबड़ायो वियो आहे। ईरान डोनाल्ड ट्रम्प ई रहियो आहे त इज़ान चयो अध में मफ़ाद में न आहे त रारियत जो मोटरो
4: बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमाम।
0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
5: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी 91.0
6: डिस्क नेटवर्क।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: आपका सच जो आवाज मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज बदलदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है आवाज
2: उसी खिते है आवाज
1: नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर उधर
1: जलंधर लाल शहबाज
2: उसी खत्ते की बनी है आवाज,
1: GA FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दारा।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

जी जनाब वेलकम भलीकार खुश आमदीद सिंधड़ी जी शाम अवां के एक दफा बेहर मोहब्बत भरियो सलाम आर जे यूनिस बकारी जो। जी दोस्तों मेहरबानो कदरदानो भेनरो ए भाइरो जी एफएम 88 रेडियो नेटवर्क के तमाम स्टूडियोज मां अवां साण सिक मोहब्बत पंजाए पजो गसन ते विख विख ते गडूंदासी ठीक सते वगे ताई प्यारे पंजाए पजे रंगन में ही नव रंग शामिल थी चुको है। असि कोशिश कंदासी ते इन में ताजा मैसेजेस शामिल कयूं जो सेकेंड आवर हों उनमें ताजू कॉल्स भी शामिल कंदासी। त मैसेज करण जो तरीकेकार यो है अज जेकरे तां मैसेज हाणे हाणे बुधो पिया मूंखे तव्हां सखर में आयो या तव्हां मीरपुर खास में लाड़काणे में आयो या मातली में तव्हां सकरंड में मटियारी में मेहरापुर में या मोरे में जिते जिते भुजो हुजो हशाश ऐं बशाश खुश ऐं बाश शालावा जी मुर्क मेरी न थिए। ऐं हा मैसेज मोकिलण चाहियो था त टाइप करियो MTI लिखण खां पोइ थोरो स्पेस ॾियो ऐं उन खां पोइ पंहिंजो नालो लिखो पंहिंजे ॻोठ पंहिंजे शहर जो नालो लिखो सेंड कयो मैसेज हाणे ई सेंड करियो 888 यानी 888 81 88 जो नंबर आहे पर शुरूआती जेको कोड हूंदो आहे जॾहिं तव्हां पे वेंदो मैसेज लिखण टाइप शुरू कंदो त उते तव्हांखे MTI मातली जो शॉर्ट अखर हूंदो MTI उहो लिखंदव त पोइ असांजे सॼे नेटवर्क तां तमामु जेके मैसेजिस आहिनि उहे असां वटि स्क्रीन ते शो कंदा ऐं असीं अवां जा मैसेज कंदासीं शामिल। जीए FM 88 रेडियो नेटवर्क खे ध्यान सां गौर सां प्यार सां ऐं पंहिंजाइप अवां जो थोरो थर जी वारी खमंदो आगस्ट जो आख़िरी ॾिहाड़ो ऐं सेप्टेंबर ॾांहुं वधंदड़ विख यानी लम्हा ब लम्हा असां मोहबतुनि में अवसाइण हूंदासीं वखातिब अवां जूं ॻाल्हियूं बि कंदासीं अवां जा मैसेजिस बि शामिल कंदासीं पर साज़ ऐं आवाज़ जे साथ में तॾहिं मज़ो ईंदो जॾहिं अवां बि थी वेंदव बिल्कुलु शामिल। त पोइ बसि तव्हां बिना देर जे मैसेज टाइप करे वठो ताकी तव्हां सां ॻाल्हियूं थियनि ज़बरदस्त ऐं तव्हां सां थियनि दिलि जूं ॻाल्हियूं ऐं ॻाल्हियुनि में हूंदियूं उहे ॻाल्हियूं बि शामिल जेके तव्हां लिखी मोकिलींदा।

ओके जने पहिरियों ट्रैक वठी वठंदा न रोटो ब्रेक वठी वठंदा उन खां पोइ अची वञे मैसेजेस शामिल कंदा सी केर सां शामिल हूंदो केर सां सुठो मवाद मोकिलींदो केर सुठियूं ॻाल्हियूं कंदो उहो अवां ते था छॾियूं फ़िलहाल अवां खे वरी तरीक़ेकार ॿुधायूं टाइप कजो MTI स्पेस पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखी पंहिंजो नालो लिखिजो 8881 ते मैसेज हाणे ई मोकिले छॾियो बदीन खां बखर सीराणी खां सखर कींजर खां कारूंजर केटी बंदर खां कश्मोर ताईं गूंजंदड़ सॼी सिंध जो आवाज़ जी हा सिंधड़ी जी शाम GFM 88 रेडियो नेटवर्क जे लिसनर्स जे नाम

जी जनाब वेलकम भलीकार खुश आमदीद अवां शो बुध पिया सिंधड़ी जी शाम सिंधड़ी जी इन शाम में जिते जिते अवां असां खे ज्वाइन कयो आहे तव्हां बुध पिया जी एफ एम 88 रेडियो नेटवर्क खे जी एफ एम 88 रेडियो नेटवर्क जे स्टूडियोज मां ऑन एयर थींदड़ी आवाज़ प्यार जा पखेड़ा उॾार करे जिन जिन इलाइक़नि में कनायो पियो वञे सभिनी जूं महिरबानी सभिनी जा वॾा वड़ ऐं हा अवां जेकॾहिं शामिल थियण चाहियो था त मैसेज मोकिले सघो था टाइप करियो MTI स्पेस ॾियो पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखो पंहिंजो नालो लिखो ऐं 881 यानी 8881 ते मैसेज मोकिले सघो था सो जनाब 8881 असांजो नंबर आहे उन ते मोकिलियो मैसेज ऐं उन खां पोइ ॾिसंदासीं त असां सां गॾु केरु शामिल थींदो त पोइ दोस्तो महिरबानो क़दरदानो अवांजे मैसेजनि जो ओसियड़ो मिलंदो पियो घरो घर असीं मुख़्तसिर ॻाल्हि ॿोली न करे कयूं पिया त जीअं असां कोशिशि कयूं तव्हांजा कुझु मैसेज अची वञनि त उहे बि असां शामिल करे वठूं अवां वटि मौसम कीअं आहे अवां वटि हींअर कहिड़े क़िस्म जो माहौल जुड़ियल आहे इहो बि तव्हां खां कॉल्स ते पुछंदासीं पर पुछंदासीं थोरी देरि खां पोइ यानी 6 वॻे खां 7 वॻे ताईं वारे कलाक में तव्हां जूं कॉलूं वठंदासीं हिन महिल असां मैसेज शामिल करणु चाहियूं था ॾिसंदासीं त केरु महिरबानी आहे जेको लिखंदो MTI स्पेस ॾेई पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखी पंहिंजो नालो थो लिखे ऐं 881 ते मैसेज ॾियारे थो मोकिले त पोइ फ़िलहालु पाण वठूं था हिकिड़ो ब्रेक ऐं ट्रैक. Thank you.

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार है, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो ख़ात्माए दर्द कोरस। हिकु आज़माए
3: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज़। ॿुधंदा रहो, ॿुधंदा रहो।
4: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
5: उसी खित्ते की बनी है आवाज़।
4: GAFM नेटवर्क
5: सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

शोज़ आहिनि उहे हलंदा रहंदा, पर कुझु जेके नेटवर्किंग शोज़ आहिनि उहे थोरा चेंज थी चुका आहिनि, उन जा टाइम वग़ैरह सभु कुझु हलंदा असां सां जल्दी शेयर कंदासीं। पर मुंहिंजो जेके शो अॻे तव्हां जिन ॾींहनि ते ॿुधंदा उन्हनि ॾींहनि ते न, बल्कि हाणे फ़िलहालु नए शेड्यूल मूजिबि हर सूमर ऐं अंगारे ते शाम जो 5 वॻे खां 7 वॻे ताईं तव्हां ॿुधी सघंदा। जी मज़े सामाइन ॻाल्हियूं अवां जूं पिया कयूं ऐं अवां जे ॻाल्हियुनि में असीं कोशिशि कयूं पिया तव्हांजा मैसेजिस बि शामिल कंदासीं। पर जीअं मूं पहिरीं चयो त मौसम ॾाढी शानदार आहे, काफ़ी इलाइक़नि में जेका मौसम आहे उहो थधी मौसम आहे ऐं सिज जेको आहे उहो घटि निकिरी रहियो आहे, पर जिते जिते थोरो घणो सिज निकिरे पियो इहो बि असांजे लाइ सही आहे। इन करे त सारियाल जी मौसम आहे, अवां ॼाणो था त सारियूं जेके आहिनि उहे उतर जे इलाइक़नि लाड़ या विचोले इलाइक़नि में हिन महिल काफ़ी अहिड़ा इलाइक़नि जिते, पर काफ़ी अहिड़ा इलाइक़नि जिते पाणी जी खोट सभु देरि सां सारियूं वेहरियूं वयूं आहिनि, जिते हाणे सारियूं जेको आहिनि उहो अन ॾियण यानी चांवर ठहिण जे प्रोसेस में आहे। जेकर सिज घणो न निकितो त उते नुक़सान थींदो साहिड़ियुनि खे, इहो ज़रा ई माहिर चवनि था। सो दुआ कयो त असां हुजे भली, पर रात कामयाबु हूंदी ऐं असांजो ज़मीनदार असांजो हारी बहितर हूंदो त ॾही बहितर थी सघंदो। अलाह करे त असांजी सुवारी सिंधी आहे, समूरा ख़ूबसूरत हुजनि।

ओडा जी हुजूर बख्श रिंद खां असांखे ज्वाइन करे चुका आहिनि। शादी खान रिंद साहब ऐं दीन मोहम्मद रिंद अवांजी महिरबानी लख तौर आहे। अयाज रिंद ऐं नंढड़ो हुसैन रिंद, थैंक यू। भलीकार चवंदासीं अव्हांखे अव्हां जूं मोहबतूं जो अव्हां असांखे ॿुधो पिया ऐं अव्हां असांखे मैसेज मोकिलियो। ईअं ई बिल्कुलु मौज़ूद सामाइन तव्हां बि असांखे लिखी सघो था। MTI स्पेस ॾियो, पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखो, पंहिंजो नालो लिखो ऐं 888-881 ते मैसेज ॾियारे मोकिलियो। हिकिड़ो नंढो ब्रेक वरी वठंदासीं। शाम जो पहर आहे, ख़ूबसूरत मंज़र आहे, आसपास में तव्हां माहौल ॾाढो सुठो ठहियलु हूंदो। उन माहौल ऐं मंज़र खे साम्हूं ॾिसंदे असां बरकत अली जो ही आवाज़ अव्हां जे लाइ पेश पिया कयूं। अचो त गॾिजी ॿुधूं शाम जो ही पहर नाओ असांजे कयूं।

पेर पवन मुझा गीत हुजन विखरियल उन्हनि वाटरनि ते. अवांजे वाटरनि ते हिकिड़ो ख़ूबसूरत गीत विछाईंदासीं, ॿुधंदासीं हिन ज़बरदस्त ट्रैक खे. एंजॉय कजो, बाक़ी ॻाल्हियूं ब्रेक खां पोइ.

असांखे झंडो मरी खां ज्वाइन कयो आहे। कुर्बान अली ख़ासि कैली मिठा माण्हू, तमामु घणी मोहबतूं तव्हांजो, अवां असांखे यादि कयो, मैसेज कयो, महिरबानी कुर्बान ख़ासि कैली, वेलकम ऐं भलीकार। जीवन सामीन तव्हांखे चयो त पहिरीं कलाक जे ब्रेक खां पोइ असां ॿिए कलाक में जॾहिं वेंदासीं त तव्हां हिकु ॻाल्हियूं कबियो फिल वक़्तु, छाकाणि घटि टाइम आहे ऐं न्यूज़ ब्रेक जेकॾहिं असां वटि हूंदो त न्यूज़ ब्रेक वठंदासीं, छाकाणि इहो न्यूज़ ब्रेक लाज़मी हूंदो आहे, पर कॾहिं केॾी महिल असांजी काफ़ी लिस्ट न्यूज़ ब्रेक जो इशू हूंदो आहे, नेटवर्किंग जो इशू थी सघे थो, पर न्यूज़ जो को बि इशू न हूंदो, इनशाला न्यूज़ हूंदी तव्हांखे ॿुधाईंदासीं ऐं गॾो गॾु असां वांखे वठी हलंदासीं। साज़ ऐं आवाज़ जे साथ में जिता हिकिड़ो ज़बरदस्त ट्रैक तव्हांजे लाइ कॉल करे वठंदव, त पोइ गॾिजी ॿुधी था वठूं मिठो आवाज़ ऐं शमन मीराली जो अचत गॾिजी।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: हदुन जी हिफाजत कंदा रहंदासीं। सर हिकड़ी तारीख़ी हैसियत आहे, सिंध जॾहिं अंग्रेज सरकार जे दौर में जॾहिं बम्बई खां मर्ज थिए थो त हिकड़ी तारीख़ी जदोजहद हले थी।
3: मटियारी के हो तो आवाज़ भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
4: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
5: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
4: जीए एफएम नेटवर्क,
5: सिंध की आवाज।
4: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
5: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
4: जीए एफएम नेटवर्क,
5: सिंध की आवाज।
4: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
5: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
4: जीए एफएम नेटवर्क,
5: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: आहे, तव्हां डंग एंजॉय कजो, खाइजो, खजूं खाइजो, असांखे पंहिंजे दुआउनि ऐं मोहबतनि में यादि कजो, ऐं असांखे बि केरु पियो ॿुधे।
1: साईं मुंहिंजो प्यारो दोस्त आहे हिन वक़्तु नज़ीर अहमद महिरो साहिबु।
0: जी जी।
1: ऐं उन खां अलावा तमार मोहम्मद बचल शरवाणी साहिब आहे, ऐं ॿी सिंध में जेसी ताईं तव्हां जा आवाज़ वञे त पूरे नेटवर्क जो जेके ॿुधनि था भाउर भेनर सभिनी खे सलाम अंदाज़ अली शरीफ़ तरफ़ां।
0: वालेकुम अस्सलाम, महिरबानी मिठा माण्हू, लख थोरा तव्हां जा। जी जनाब, सनम मारवी जो आवाज़ आहे तो बिना त सर ई न थी, शानदार ट्रैक आहे। जी थोरो ॿुधंदासीं, इन दौरान कॉल बि अटेंड कंदासीं, छो त हिन जो पैटर्न इहो हूंदो आहे त असां गानो घटि ॿुधाईंदा आहियूं, बैकग्राउंड में हलाईंदा आहियूं, बल्कि कोशिशि कंदा आहियूं त तव्हांजो कॉल्स खे वधीक अहमियत ॾियूं। सो कॉल्स शामिल थींदियूं, पर पहिरीं थोरो सनम मारवी जो आवाज़ कंदा वठो।

0: सब दोस्त बुधन था चंगो तमाम घणे मेहरबानी तवां जो शहजाद साईं साईं हाजिर बुधराईंदासीं बिल्कुल बुधराईंदासीं जी साईं ॾिसंदासीं हाणे कल ते केरु हलो अस्सलाम
1: वालेकुम प्यारा भाई
0: वालेकुम अस्सलाम केरु साहब पियो ॻाल्हाए मां हिते ई आहियां बसि हिते कुझु ॾींहं वोकल ते हुयसि हाणे अची वियो आहियां ख़ुशि आहियो तव्हां साईं ठीकु आहियो
1: ख़बर पई आहे त जून सुभाउ
0: चैनल वसायो आहे टीवी जो असांखे छॾे वियो आहे न न जी एफ एम साण साह लॻल आहे ऐं उन जे एतिरा असांजा जी एफ एम स्टूडियो जेके आहिनि चौ तरफ़ वॾा वॾा प्लाट आहिनि असांजे इदारे जा दफ़न बि उते थींदासीं इनशाला दुआ कजां
1: अलाह तोखे वॾी हयाती ॾे
0: महबूब साईं ऐं तव्हांजो थोराए थो आहियां इहे तव्हांजी मोहबतूं आहिनि न भला इहे थोरा लाहे कोन सघबा गाइब
1: आहे
0: मां थोराए थो तव्हांजो तव्हां सां गॾु कुझु दोस्त आहिनि जेके ॿुधनि था मां ख़ुदि इनशाला हिकिड़ो क्रीम वारो प्रोग्राम कंदसि तव्हांखे ॿुधाईंदासीं पर जल्दी जल्दी असांखे हिकु कमर्शियल कंपनी मिलंदी न जेका मूंखे पसंदि कंदी सिदरा ॾाढो सुठो प्रोग्राम कंदी आहे असांजे हिते माना सॼी सिंध में सिदरा जेतिरो जेतिरा सुठा ट्रेक सुठो प्रोग्राम ॿियो केरु बि कोन थो करे असांजी भेण ॾाढो सुठो प्रोग्राम करे थी मुंहिंजो प्रोग्राम कोन घटियो मां ख़ुदि घोसड़ो आहियां ख़ुदि कोन ईंदो आहियां कॾहिं कॾहिं हिन में कंहिंजो ॾोहो कोन्हे मां ईंदुसि हाणे मुंहिंजा अॼु प्रोग्राम आहे सुभाणे मुंहिंजो हूंदो इनशाला पंज खां सत वॻे ताईं ठीकु आहे रोज़ानो फ़िलहाल न अञा फ़िलहाल आउं नओं आहियां सिखी वठां ठीकु आहे थैंक यू सर महिरबानी लख थोरा अलाह करे आबाद हुजो ओके जनाब ॾिसंदासीं हाणे कॉल ते केरु हलो अस्सलाम वालेकुम छा हाल आहे लाशारी साहब ख़ुशि आहियो ठीकु आहियो तबियत बिल्कुलु वी वी आई पी लॻी पई आहे झलूरी खां जेकॾहिं ख़ालिक यादि कंदो त पोइ बाक़ी ॿियो छा खपे बसि तव्हां यादि कयो हाणे त सफ़ा ईद वांगुरु ख़ुशि थी वियसि हा त तॾहिं त प्रोग्राम जो नालो आहे सिंधड़ीअ जी शाम
1: तमामु सुठो प्रोग्राम ॿुधाईंदा
0: ऐं बसि इंजीनियर साहिबु ॿुधे पियो मुंहिंजी तव्हां सभिनी जी कॉल्स खे जेकॾहिं किथां फौजिया सुमर जो गानो खणी ईंदो तव्हांखे बिल्कुलु ॿुधाईंदासीं
1: कुझु दोस्त भाउ ॿुधनि
0: वालेकुम असलाम लख थोरा साईं अव्हांजे दोस्तनि खे असांजे पारां सिक भरियो सलाम कुर्ब साईं कुर्ब जी दोस्तो ही असांजो जेको नंबर आहे उहो हिकिड़ो दफ़ो रिपीट पिया करियूं नंबर बिल्कुलु सवलो आहे 03-4-35-25-786 ॿुड़ी 3-34-25-786 ते कॉल अचे पई ॾिसंदासीं त कॉल कंहिंजी आहे ऐं कंदासीं हाल अहिवाल हलो अस्सलाम वालेकुम कॉल कटिजी वई शायदि नेटवर्क जो इशू हूंदो बहरहाल को मसलो कोन्हे ऐं तव्हांजो तमामु घणियूं मोहबतूं आहिनि ऐं अव्हांजो थोराए थो आहियां तव्हां टाइम कढी असांखे ॿुधो पिया ऐं गॾो गॾु क्यू शीट में ऐं कोशिशि कंदुसि त तव्हांजे लाइ फौजिया जो को ट्रैक रखी वठूं सो बहरहाल दोस्तो महिरबानी साज़ ऐं आवाज़ सॼी कॉल अची चुकी आहे ॾिसूं था त उहा कॉल कंहिंजी आहे ओके जनाब हलो अस्सलाम वालेकुम जी तव्हां रेडियो जो आवाज़ घटि करियो रेडियो जो आवाज़ घटि कयो तव्हां वटि इको पियो थिए वालेकुम अस्सलाम
2: हलो
0: जी केर साहब तव्हांजो आवाज़ अचे पियो तव्हां रुगो जेको पासे में रेडियो वॼे पियो न परे करे छॾियो हा वाहिद बख़्श ख़ुशि आहियो ठीकु आहियो चङा भला आहियो हा अव्हां सां गॾु बि केरु पियो ॿुधे
2: असां सां गॾु सेठ वज़ीर ॿुधे पियो ॾंगरूं

0: जी जी
1: सत्ते मामले रंगणू
0: नंढड़ो सालार सभिनी जी महिरबानी लख थोरा कुर्ब साईं ॾिसंदासीं हाणे काल ते केरु हलो अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम अस्सलाम
0: जी केर साहब ऐं किथां खां आवाज़ चांग साहब तव्हांजो घटि पियो अचे थोरो ज़ोर सां ॻाल्हाईंदो न अञा बि तव्हांजो आवाज़ घटि पियो अचे अलाए जे छा जे करे शायदि हाणे अचे पियो आवाज़
2: मोबाइल जो नेटवर्क चकर
0: ख़ैर का ॻाल्हि कोन्हे अच्छा हाणे वरी नालो ॿुधायो ताकी असांजे सॼे नेटवर्क ऐं सभिनी स्टेशननि ते तव्हांजो नालो अचे मंज़ूर अहमद चांग ॿुधायो ईअं न अच्छा जी मंज़ूर चांग जी कॉल ई ड्रॉप थी कावड़ में कॉल ई कटे छॾी भाउ हाणे ॾिसूं था कॉल ते केरु हलो अस्सलाम वालेकुम जी जी साईं नए दुम्बाले खां ॻाल्हाए पिया पंहिंजो नालो ॿुधाईंदो अच्छा अच्छा छा हाल आहे ख़ुशि आहियो ठीकु आहियो अलहमदुल्ला अलहमदुल्ला तव्हांजी दुआ आहे अव्हां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे अकेला वेठा
2: आहियो
0: पोइ अकेला आहियो त फौज़िया जो आवाज़ ॿुधो तव्हांखे कुझु न कुझु महसूसु थींदो अच्छा ॿुधी वठो

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
2: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
1: अम्मा आयशा अस्पताल।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।
4: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
5: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
4: GA FM नेटवर्क
5: सिंध की आवाज।

0: जी जनाब वेलकम भलीकार खुश आमदीद ही आहे जी एफ एम 88 रेडियो नेटवर्क ऐं जी एफ एम 88 रेडियो नेटवर्क जे स्टूडियोज़ मां तव्हां शो ॿुधो पिया सिंध ॾींहं जी शाम ऐं सिंध ॾींहं जी शाम में यकीननि असां तव्हांजो लाइव कॉल्स वठूं पिया तव्हांजो तमामु घणी मोहबतूं महिरबानी भलीकार चवंदासीं यूनुस बकारी सां गॾु केरु हूंदो हाणे त उन जे लाइ तव्हां कॉल करियो 0334-3525-786 ते ॾिसंदासीं हाणे कंहिं जॉइन कयो हलो अस्सलाम वालेकुम साईं अलहमदुल्ला केर साहब ऐं किथां खां
1: साईं मां सुजीत संगरासी हैदराबाद खां
0: छा हाल आहे ख़ुशि आहियो साईं ठीकु आहियो अलहमदुल्ला अलहमदुल्ला तव्हांजी दुआ लॻी पई आहे साईं साईं कहिड़े कुर्ब तव्हांजा तव्हां पहिरियों दफ़ो कॉल कई आहे दिलि जे गहराइनि सां तव्हांखे भलीकार ऐं वेलकम था चऊं अलहमदुल्ला तव्हां सां गॾु के दोस्त ॿुधनि था जी जी
1: ऐं हुते जेको आहे पंहिंजे चित्र जो प्यारे प्यारो दोस्त आहे हाजी यार मोहन उहो बि पुछे थो महबूब अली राजल
0: जी जी
1: इहा सभु तव्हांखे साईं माना चवंदा जेके सलाम बि ॾियनि पिया
0: जी जी
1: असांखे साईं जो बालान जूंजे जो माना सम्झ जेको कलाम ॿुधायो
0: जी इनशा ॿुधाईंदासीं थैंक यू सर तमामु घणी महिरबानी ॿिन्ही में बिल्कुलु बिल्कुलु ॿुधाईंदासीं बिल्कुलु
1: ॿुधाईंदासीं
0: जी जनाब नंबर आहे असांजो 0334-3525-786 ॿुड़ी 3024-3525-786 इन ते करियो कॉल ऐं ॾिसंदासीं त असां सां कॉल ते केरु शामिल थो थिए ऐं हाणे कॉल अची चुकी आहे ऐं ॾिसूं था कॉल ते केरु हलो अस्सलाम वालेकुम छा हाल आहे लाशारी साहब ख़ुशि आहियो ठीकु आहियो अवां सां गॾु ॿियो केरु बि ॿुधे साईं जी जी महिरबानी साईं लख थोरा तव्हांजा जी जनाब ॾिसंदासीं त कॉल ते केरु हलो अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम सलाम
0: जी केरु साहब ऐं किथां खां छा हाल आहे रुस्तम साईं ख़ुशि आहियो ठीकु आहियो चङा भला मतारा जोड़
2: शुक्र हलाए दुआऊं तबियत
0: अलाह साईं जा अहसान आहिनि तव्हांजे दुआउनि सां बिल्कुलु ठीकु ठाक ऐं हशाश वशाश आहियूं
2: जी जी असांजूं दुआऊं तव्हांखे ख़ुशि करे
0: जी जी जी महिरबानी अवां पंहिंजे दोस्तनि जा नाला खणणु चाहींदो
2: हा दोस्त ॿुधनि पिया लखा ॾिनो जूणे जो मलिक मोहम्मद बलोच दिलीप कुमार मेघवाल ऐं जेके बि दोस्त ॿुधनि पिया सभिनी खे सलाम
0: वालेकुम असलाम तमामु घणी महिरबानी लख थोरा साईं

0: जी जनाब, डॉक्टर मोहम्मद कुंभार साहब असें ज्वाइन किया है, डॉक्टर शम्स असें ज्वाइन किया है, दानिश बकारी साहब असें ज्वाइन किया है, आपदा परवीन बुधरा लख थोड़ा तुझा बिल्कुल बुधराइंदी छोक बुधराइंदी तवजो मेहरबानी तक बुध पे अवजा शुक्रगुजार आयो। कॉल से असा गुड केर हों उन पैर अस कॉल वे कोशिश क्यों कॉल से केर हलो असल
1: वालेकुम अस्सलाम
0: जी केर साहब है किथा का
1: गुलाबी संगत खबड़ी भिट तालुका सालेपट का इरफान अली थे बो
0: गुलाबी संगत खबड़ी भिट तालुको सालेपट यानी जिलो सखर है ना
1: जी हाँ जिलो सखर
0: इरफान अली समूह साहब के इरफान अली समूह नालो बुधायो छा बुधायो इरफान अली थे बो। अच्छा जी वेलकम चवंदासीं तव्हांखे काफ़ी ज़मानो थियो आहे यादि करण खां पोइ विया अॼु यादि कयो तव्हां तव्हांजी महिरबानी
1: तव्हां अचो था ख़बर ई कान थी पए प्रोग्राम कयो था अलाए कयो ई कोन था टाइम मटाए छॾियो अथव असांखे ॿुधायो ई कोन
0: था। न न न न न मुंहिंजो प्रोग्राम हाणे न्यू जेको शेड्यूल आहे नई सेम आई जेका अॼु लास्ट डे आहे सुभाणे खां जेका टिनि महीननि जे लाइ नई सेम आई आहे उन में हाणे अची वियो आहे सूमर ऐं अंगारे जे ॾींहुं शाम जो 5 वॻे खां 7 वॻे ताईं। सो इनशाला गॾु हूंदासीं जी जी जी बिल्कुल कॾहिं कीअं हूंदो आहे न ईअं हूंदो आहे त कॾहिं कॾहिं मां ईंदो आहियां कॾहिं कॾहिं वरी कोन हिकिड़ा ॿार स्कूल कोन वेंदा आहिनि स्कूल मां गुसाईंदा आहिनि उनखे छा चइबो
1: आहे
0: जेको स्कूल में ॿार न वञे ओचितो भॼी वञे रिसेस में उनखे छा चवंदा आहिनि उनखे गोसड़ू शागिर्द चइबो आहे न
1: जी हाँ बिल्कुल
0: तो ये कदे कदे गुस्साए वेंदो आया वाकई ये तवाजी शिकायत जायज है हाँ कोशिश कबी त कौन गुस्साईंदा जी बस
1: इंशाल्लाह असा भी कोशिश कंदे तक शेड्यूल दिनो है इन मुताबिक तव्हांखे कॉल कयूं ऐं मूंखे अॼु बि नज़ीर मंगे कॉल करे ॿुधायो त तव्हांजो
0: हा नज़ीर साहब जी बिल्कुल कॉल आई हुई अवां सां गॾु बि केरु पियो ॿुधे उन्हनि जा नाला खणण चाहियो था
1: मां कोशिश कई त तव्हां सां राब्तो करे तव्हां खां पुछां टाइम पर मां न पुछी सघंदी आहियां मुंहिंजी बि ग़लती आहे ऐं मां तव्हांखे साॻनि ॾींहंनि ते तलाश कंदो रहियुसि त मूं चयो काश हिन ते हुजे पर अॼु मूंखे थोरो देरि थो अचे त तव्हां हुन टाइम बि मूंखे ॿुधायो त मुंहिंजा शेड्यूल कुझु चेंज छा आहिनि।
0: बिल्कुल ईअं सो बहरहाल इनशाला गॾु हूंदासीं न असां नेटवर्क जो हिसो आहियूं नेटवर्क असांजे असांजी हिकड़ी फैमिली आहे GFM 88 फैमिली जो हिसो आहियूं असांखे जंहिंखे जेॾी महिल जिते जिते हिसो पती मिलंदो आहे उहो उते शामिल थींदो त जेको हाणे मुंहिंजो शेड्यूल आहे नेटवर्क जो इनशाला हर सूमर ऐं अंगारे जे ॾींहुं शाम जो 5 खां 7 वॻे ताईं
1: बिल्कुल
0: न न बाबा GFM सां गॾु ज़िंदगी आहे ज़िंदगी बि हिते ई गुज़ारींदासीं जंहिं रेडियो नेटवर्क सां गॾु हलबो जंहिं सां रहबो उन सां निभाइबो हा इनशाला इनशाला। अच्छा दोस्तनि जा नाला खणण चाहियो था त खणी वठो
1: बिल्कुल सलाम सिस्टर मिसिस अली ऐं फौज़िया फरज़ाना हुन खां पोइ राज सुमरो मंताज सुमरो हाफ़िज़ गुलाम अहमद सांबल बचत जमानी नज़ीर मंगरियो जेके दोस्त ॿुधनि था हुननि सभिनी खे इरफान अली थिए
0: इरफान अली थिए महिरबानी मोहबत ख़ुशि हुजो ॾिसंदासीं हाणे काल ते केरु हलो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी कॉल ड्रॉप थी वई आहे ईअं थींदो आहे न कॾहिं कॾहिं कॉल ड्रॉप थी वेंदी आहे त पोइ ॾुख बि त थींदो ॾिसूं था हाणे केरु आहे काल ते हलो अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम भाउ कहिड़ो हाल आहे ख़ुशि आहियो
0: शुक्र आहे केरु साहब ऐं किथां खां
2: घोटु बाबू वेरो थरपारकर खां ॻाल्हाईंदो दिलीप कुमार मेघवाल
0: हा थरपारकर जी कीअं मौसम भला
2: मौसम ईअं समय त सीउ लॻे पियो जहिड़ो करे अहिड़ी थधी हवा लॻे
0: आहे है वाह वाह। अच्छा भला जेके बरसातूं थोरणियूं ई पयूं आहिनि पर कुझु फोटड़ो थियो आहे सावक थी
2: न बरसातूं असां वटि त हिता जाम जाम बरसातूं पयूं हुयूं पर मसालो इहे हिन वारे उहो गांव में कोन मज़ो निकी फसलनि में मज़ो कोन माल बि जीअं थियो बुख थी
0: आहे है अला साईं रहम फरमाईंदो असीं तव्हांजे लाइ दुआगू आहियूं अवां सां गॾु बि केरु पियो ॿुधे
2: जी रुस्तम अली पवर रामचंद कुमार कोलिया मलक मोहम्मद बलोच मोहम्मद साले लगारी ऐं ॿिया जेके ॿुधनि पिया सभिनी खे सलाम ऐं मुंहिंजे भाउनि जा नाला वठंदोसीं नवल राय दानिश कुमार सूरज गुल शंकरलाल मेघवाल बाबू ॿिया जेके ॿुधनि पिया सभिनी खे
0: महिरबानी महिरबानी लख थोरा ॾिसंदासीं हाणे काल ते केरु हलो अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम
0: जी केरु साहब ऐं किथां खां ज़िलो नौशहरो फ़िरोज़ कंडियारे खां मेहर अली कलोड़ा साहब वेलकम था चऊं तव्हांखे भलीकार हा बस कुछ ॾींहं मोकल ते हलियो वियोसि हाणे हाज़ुर आहियां बाबा हाणे कोन घुसाईंदसि बाबा कोन थींदो न बसि सोरी बाबा सोरी अलहमदुल्ला तव्हां सां गॾु बि केरु पियो ॿुधे जल्दी जल्दी नाला खणी वठो मूंखे ब्रेक वठिणो आहे
1: जी मुंहिंजो भाउ आहे मां ज़मीन कलोड़ो पियो निसार कलोड़ो ॿियो जेके बि ॿाहिरि भेनियूं ॿुधंदा सभिनी खे हिनजो मनसाज़ लाइ छा इहो गानो ॿुधाए तुंहिंजी कावर में प्यार लाइ छा हूंदो
0: इनशाला इनशाला महिरबानी मिठा माण्हू लखत वारा तव्हांजा
1: ठीकु
0: आहे महिरबानी

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: जी जना, वेलकम बैक। ही आहे GFM 88 रेडियो नेटवर्क। कॉल ते हलंदासीं ऐं कॉल 0334352578 ते ॾिसंदासीं केर असां सां गॾु। हलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अदी ठीक आहियां, तव्हां केर पिया ॻाल्हायो? अदी हा, महिरबानी अदी। डॉक्टर शम्स असांखे ॿुधे थी बदीन खां। भलीकार भेण, वेलकम चवंदासीं तव्हांखे। तव्हां पहिरियों दफ़ो, बल्कि काफ़ी ज़माने खां पोइ ॿुधो, अॻे त ॿुधंदा रहंदा आहियो पर अॼु तव्हां असांखे ॿुधो पिया। कीअं पियो लॻे प्रोग्राम? प्रोग्राम कीअं पियो लॻे? आपदा परवीन, बिल्कुल मां इंजीनियर खे हाणे हाणे चवां थो, छाकाणि क्यू थियल हूंदी पर बैकग्राउंड में हाणे हाणे हलंदी, छो त कॉल्स जे प्रोग्राम में हलंदो गानो घटि आहे, पर असां आपदा परवीन जो ही गानो जेको आहे न, किथे मेहर अली किथे तेरी सना या को हिकिड़ो सुठो गीत ॿुधाए था छॾियूं। ठीकु आहे दी?
3: ठीकु आहे दा, थैंक यू।
2: महिरबानी भेण, लख थोरा ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो। जी मज़िस ख़ातिन हज़रात, असांजी अदी डॉक्टर शम्स असां कॉल लाइन ते मौजूदु हुई। ॾिसंदासीं त हाणे असां सां गॾु कॉल ते केरु आहे ऐं केरु असां सां मुखातिबु थींदो। अवां ॿुधो पिया यूनस बकारी खे 0334352578 ते। हलो, अस्सलाम वालेकुम। हलो, अस्सलाम वालेकुम। हलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आवाज़ अचे पियो था? हा, मां सदको वञा। अच्छा, केरु केरु पियो ॿुधे तव्हां सां गॾु? तव्हां पाण केरु पिया ॻाल्हायो? जी जी, हाज़िर हाज़िर हाज़िर हाज़िर। महिरबानी ऐं मोहबतूं तव्हांजो मिठा माण्हू। कुर्ब साईं, कुर्ब। ॾिसंदासीं हाणे कॉल ते केरु। हलो, अस्सलाम वालेकुम। जी केरु पिया ॻाल्हायो? हलो हलो, वालेकुम अस्सलाम। केरु साहब पिया ॻाल्हायो? छा हाल आहे चांडिया साहब? ख़ुशि आहियो, ठीकु आहियो, चङा भला। मतारा जोड़ ॿार बचा टंगड़े में आवाज़ अचे पियो? आवाज़ अचे पियो भाईजान? शायदि आवाज़ कटिजी वियो। ॾिसंदासीं ॿी कॉल ते केरु। हलो, अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम अस्सलाम
2: साईं। केरु साहब ऐं किथां खां? कहिड़ा हाल आहिनि लखा ॾिना जुनेजा साहब? शुक्र अलहमदुलिल्लाह, साईं जा अहसान आहिनि, तव्हां जूं दुआऊं आहिनि, बिल्कुलु ठीकु ठाक आहियां। तव्हां सां गॾु ॿियो केरु केरु पियो ॿुधे? अच्छा अच्छा, लख थोरा तव्हांजा। काफ़ी ज़माने खां तव्हांजो मिठड़ो आवाज़ ॿुधोसीं, मोहबतूं तव्हांजो साईं। हाज़िर हाज़िर हाज़िर हाज़िर, इनशाला इनशाला। ॾिसंदासीं हाणे कॉल ते केरु। हलो, अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम अस्सलाम, यूनुस वकीला।
2: शुक्र अलहमदुलिल्लाह, केरु साहब ऐं किथां खां?
5: साईं मोहम्मद सलीम अहमदाणी, साबंदस्ती ॻोठ गाज़ी ख़ान अहमदाणी खां।
2: कहिड़ा हाल आहिनि अहमदाणी साहब? ख़ुशि आहियो, ठीकु आहियो।
5: दुआ लॻी पई आहे, तव्हां ॿुधायो।
2: अलाह साईं जा अहसान आहिनि, तव्हांजूं दुआऊं आहिनि। कीअं पियो लॻे प्रोग्राम तव्हांखे?
5: तमामु ख़ूबसूरत,
2: साईं चंडनि खे थोरो घटायो, कुझु माण्हू माना रोशनी जजी वधी वेंदी, मज़ो कोन ईंदो न तव्हांजे ॻाल्हाइण सां। जेको आवाज़ में मज़ो थो अचे, जेको वधीक ख़ूबसूरत रोशनी आहे न, उहो चार चंड न हिकिड़ो चंड काफ़ी आहे।
5: वरी चार चंड असांजा आवाज़ जा, चार अवांजे आवाज़ जा बि।
2: अच्छा, माना मुक़ाबिलो आहे, सख़्तु मुक़ाबिलो। तव्हांजे गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे?
5: तव्हां सां जेको सो राब्तो थींदो हुयो ॿारनि जी बारी खां वठी।
2: हा हा हा, पुराणे ज़माने जूं ॻाल्हियूं आहिनि, सही ॻाल्हि आहे। अच्छा, अवां सां गॾु हींअर केरु पियो ॿुधे?
5: मूंसां गॾु ॿुधे पियो मुंहिंजो नंढड़ो आहे पुट मोहम्मद सिद्दीक अमदाणी।
2: जी जी।
5: ऐं अली गुलाम आमदाणी ऐं उमर फारूक आमदाणी।
2: अल्लाह साईं सभिनी खे ख़ुशि रखे, सदाई तारनि में चंड ऐं खीर में खंडु हुजो। फरमाइश पूरी न करे सघंदुसि, सबबु इहो आहे त मुंहिंजो टाइम पूरो थी वियो आहे शो मां। हू अञा हयाती जेसी आहियां तेसी तव्हां सां गॾु आहियां। वरी सुभाणे ई मुंहिंजो प्रोग्राम हूंदो 5-7 वॻे ॿुधजो, ठीकु
5: आहे?
2: महिरबानी। हलो, अस्सलाम वालेकुम।
6: अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम। केर साहब ऐं किथां खां?
6: सर, चूहड़ जमाली ज़िले सजावल खां नाज़ मंगल खान जमाली।
2: चूहड़ जमाली ज़िले सजावल खां नाज़ नंगर खान जमाली साहब, तव्हां शाह यकीक बादशाह जे नगरीअ मां ॿुधो पिया, ख़ुशि आहियो, ठीकु आहियो? शुक्र अलहमदुल्ला, अलहमदुल्ला, अलाह साईं जा अहसान
6: आहे।
2: बसि महिरबानी असांजे भेनरुनि जूं जेके कालूं कनि थियूं, भाइरनि जूं जेके कालूं कनि था, ऐं जेके बर्दाश्त असां कनि था, उन्हनि जी बर्दाश्त खे 100 सलाम।
6: सलाम तव्हांखे महिनत मोहबत ॾियो असांखे, तव्हांखे शौक़ु न ॿुधो असांखे, तव्हांजो प्यारो, तव्हांजो महिनतूं कानिशूं, तव्हांजी टीम असांखे ख़ुशी ॾिए, तव्हां रोज़ गुलाब लाइव कॉल हुजे।
2: रोज़ लाइव कॉल वठा, ठीकु आहे, ठीकु आहे। ॿियो केरु तव्हां सां गॾु ॿुधे वियो?
6: सर, मुंहिंजो दोस्त आहे दिलीप कुमार मेघवा फल पालक सां, रोसम अली पवर आहे, चूअर जमाली खां मोहम्मद हाशिम जमाली, मोहम्मद मेहराब जमाली, गुलाम कादर जमाली, मेहताब अहमद जमाली, नज़ीर अहमद जमाली, मोहम्मद रमज़ान जमाली,

0: साईं अल्लाह साईं अवां ते बाज फरमाए अल्लाह पाक असां सभिनी ते बाज फरमाए असीं गुनहगार आहियूं रब पाक जे अॻियां दुआगू आहियूं त अल्लाह साईं असांखे घुरण कोन थो अचे रब पाक तोखे ॾियण अचे थो असांजे मारवड़नि ते मींहं वसाए त जीअं ख़ुशियूं अचनि वठो नाला संगत या भले अलाह साईं सभिनी खे ख़ुशि रखे आबाद हुजो मिठा माण्हू ॾिसंदासीं कॉल ते केरु हलो अस्सलाम वालेकुम हलो हलो आवाज़ अचे पियो हलो
1: हलो
0: जी केरु पिया ॻाल्हायो हलो आवाज़ अचे पियो हलो अस्सलाम वालेकुम अदी ॻाल्हायो खिलो न मुंहिंजो टाइम ख़तम थी वियो आहे
1: हलो
0: हलो
1: वालेकुम सलाम
0: जी अदी केरु किथां पिया ॻाल्हायो कहिड़े शहर खां मटियारी खां ॿुधो पिया वेलकम था चऊं भेण तव्हांखे वेलकम वेलकम भली करे आया ऐं अदी तव्हां सां तव्हां पंहिंजो नालो ॿुधाइण पसंदि कंदव नालो कोन था ॿुधायो चलो ठीकु आहे शो कीअं थो लॻे सुठो
1: आहे
0: शो सुठो आहे महिरबानी भेण तव्हां पहिरियों दफ़ो मुंहिंजे शो में शामिल थिया आहियो वेलकम था चऊं तव्हांखे ओके जनाब ॾिसंदासीं हाणे कॉल ते केरु हलो अस्सलाम वालेकुम जी जी चांडिया साहब महिरबानी तव्हां पहिरीं बि शायदि कॉल कई हुई हा न अच्छा तव्हां हाणे पिया कयो तव्हां जल्दी जल्दी सां ॿियो तव्हांजा अगरि केरु नाला ॿुधाए वेठो छो त मुंहिंजे मोकिलाइण जो टाइम थी वियो
1: आहे
0: बस बस ठीकु आहे पोइ जेको गानो तव्हांखे ॿुधाई पियो गौर सां ॿुधजो ठीकु
1: आहे
0: महिरबानी ॾिसंदासीं कॉल ते केरु हलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम केरु साहब आहिनि किथां खां साईं अलहमदुल्ला मुंहिंजी तबियत तव्हांजी दुआउनि सां ठीक ठाक थी वई आहे शुक्र अलाह पाक जा करम आहिनि आमीन सुम आमीन आमीन सुम आमीन
2: सर नाज़ फ़क़ीर मोहम्मद जलालाणी आरजे रेडियो नेटवर्क झोल
0: छा हाल आहे नाज़ साहब ख़ुशि आहियो ठीकु आहियो
2: शुक्र आहे अलाह साईं जा अहसान तव्हां साईं ठीकु आहियो ख़ुशि आहियो सभु ठीकु आहे
0: अलहमदुल्ला तव्हांजी दुआ लॻी पई आहे
2: माशाला काफ़ी ॾींहंनि खां पोइ तव्हांजा ड्रॉम थियनि पिया मूंखे त हिकिड़े दोस्त ॿुधायो त तव्हां ड्रॉम पिया कयो छो त तव्हांजी तबियत बहितर कोन हिन करे
0: तव्हांजा असल में कुझु वक़्त में जेको न थींदो आहे जीअं तबियत दिलि जेका आहे न बेचई थी वई पोइ वरी नवां पलक बलक लॻाए हेॾा होॾा ट्यूनिंग थी वई दिलि जी हाणे वी आई पी थी वियासीं मां थोराए थो आहियां तव्हांजो साईं कुर्ब तव्हांजा तव्हां सां गॾु ॿियो केरु केरु पियो ॿुधे
2: साथी गॾु आहिनि कुर्बान अली ख़ासि कली झंडे मरी वारो मूंसां गॾु आहे चवन कुमार कोहली आहे ऐं गुलाम रहीम बलोच आहे या जेके दोस्त ॿुधनि था हिन वक़्तु मूंखे समाज फरमाइनि था सभिनी दोस्तनि लाइ मोहबतूं कुर्बतूं
0: किरोड़े कुर्ब किरोड़े कुर्ब मिठा माण्हू जी एफ एम 88 रेडियो नेटवर्क तव्हांखे भली कार चवे थो मोहबतूं साईं ॾिसंदासीं त कॉल ते हाणे असां सां केरु हलो अस्सलाम वालेकुम
3: वालेकुम अस्सलाम
0: साईं अलहमदुल्ला केरु साहब आहिनि किथां खां
3: साईं कश्मोर खां अॼु अलीबख़्श ॻाल्हायां थो
0: कश्मोर खां
3: हाजी अलीबख़्श
0: हाजी अलीबख़्श साहब ख़ुशि आहियो ठीकु आहियो चङा भला मतारा जोड़ अलहमदुल्ला अलाह साईं जा अहसान आहिनि अवां छो त आख़िरी लमात में शो में कॉल कई आहे त मां थोरो मुख़्तसिर जल्दी पुछी वठां अवां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे
3: हा
0: महिरबानी साईं लख थोरा तव्हांजा कश्मीर खां असांखे कॉल पहुती सॼी सिंध मां कॉलूं अचनि पियूं कॉलूं लातैदाद आहिनि पर कॉल

सां गॾु तव्हांखे ॿुधायूं त मुंहिंजो हीउ शो सुभाणे शाम जो 5 वॻे खां 7 वॻे ॿुधण न विसारिजो GFM 88 रेडियो नेटवर्क जे तमाम स्टूडियोस मां इनशाला अमीम चओ इनशाला छो त हयाती जो मेलो आहे न जे हयाती हूंदासीं तव्हां जा आहियूं जे न रहियासीं त ग़लती गुस्ताखी माफ़ करे छॾिजो पेर हुजे उते खुशियुनि जा ढेर ऐं ख़ैर ई ख़ैर हुजे उस्तादनि वालदेन ऐं वॾनि जूं दुआऊं निमनि जूं छाऊं ऐं खुशियुनि वारियूं हवाऊं अवां जो मुक़दरु बणजनि अलाह निगेबान।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: brought to you by
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान बधाई।
0: आप सुन रहे थे GAFM, अब आप सुनेंगे।
3: विरहांगू न करे सकिया वडन वडन तो मानन इहो चयो अवां नवन सूबन जो बहस छेड़े छड़ियो आहे, पर सभिनी जो मुंह बंद कराइण जो वाहिद हल असेंबली में बहस कराइण आहे। सिंध बाबत फैसलो का अदालत न कंदी, नई पिंडीअ में थींदड़ सेमिनार या जलसन जलूसन में फैसलो थींदो। जेस ताईं असां मां हिकु बि MPA जिंदा आहे, सिंध जो विरहांगो न थींदो। सिंध हिकु आहे ऐं हमेशा हिकु रहंदी। कंहिंजी ख़्वाहिश या तकरीरुनि सां सिंध जो विरहांगो न थींदो। सिंध असेंबली जे इजलास में इहो फैसलो थींदो त सिंध जो विरहांगो कॾहिं बि न थींदो। वॼायो ताड़ियूं, ही सिंध हमेशा रहंदी।

सिंध असेंबलीअ में रत पेश करण जो मक़सदु सिंध जे अवाम खे सूरत हाल खां आगाह करणु आहे। सिंध जे अवाम पंहिंजो रद अमल ॾेई छॾियो। सोशल मीडिया उन जो गवाह आहे। जिन खे हिन धरतीअ पनाह ॾिनी उहे ई मादरे वतन ऐं माउ जो टुकड़ा करण जी ॻाल्हि करे रहिया आहिनि। सिंध जे मुस्तक़बिल जो फ़ैसिलो सिंध जो अवाम ऐं चूंडियल नुमाइंदा ई कंदा। पीपल्स पार्टी एम पी ए निसार खोड़े जो सिंध असेंबली में ख़िताब। पीपल्स पार्टी मेंबर राजा रज़ाक बलो चयो त सिंध असांजो वजूद आहे, पंहिंजे वजूद जी विरासत किन था करे सघूं। सिंध हिकु तारीख़, तहज़ीब ऐं सुञाणप आहे। सिंध जी विरासत जो शोशो छॾींदड़नि खे यादि रखणु घुर्जे त जेसिताईं हिकु बि हिलाली पुट मौजूद आहे त सिंध विरहाइजी न सघंदी। डॉक्टर सिकंदर शोरो चयो त पंहिंजनि आकाउनि खे ख़ुशि करण लाइ सिंध जे विरहाङे जूं ॻाल्हियूं कयूं पयूं वञनि। फॉर्म 47 ते अचण वारनि खे इख़लाक़ी तौर अहिड़ी ॻाल्हि करणु न घुर्जे। खुरम करीम सुमरो चयो त ख़बर पइजी वेंदी त सिंध जो हिलाली पुट केरु आहे। असां गोलियूं खाइण लाइ बि तयार आहियूं, पर पंहिंजी माउ सिंध खे विरहाइण न ॾींदासीं।

0: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमाम पखनि जे मुक़ाबले में ज़बरदस्त हवा। रॉयल इन्वर्टर फैंस, साथ ज़िंदगी भर का।
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें। इनाम निकलने की सूरत में मुकर्रा डीलर्स, कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें।
2: अर्जेंट ब्यूटी क्रीम, हर किस्म के स्किन को दे फ्रेश ग्लो और गोरी रंगत। अर्जेंट ब्यूटी क्रीम।
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
2: अर्जेंट ब्यूटी क्रीम, हर किस्म के स्किन को दे फ्रेश ग्लो और गोरी रंगत। अर्जेंट ब्यूटी क्रीम।
3: इन सेटिंग अप free of cost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
4: सिंध भर में नौजायदा और मासूम बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता अस्पतालों की एक बेमिसाल कलील मुद्दत में कोरंगी नंबर 5, आजम बस्ती कराची, सखर और जाम शोरों में कायम किए गए सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उतरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज़, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज़,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है एनपीएस 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खिते की बनी है आवाज,
2: जीए FM नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दारो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे FM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए
3: कंहिंजी ख़्वाहिश या तकरीरुनि सां सिंध जो विरहाङो न थींदो सिंध असेंबली जे इजलास में इहो फ़ैसिलो थींदो त सिंध जो विरहाङो कॾहिं बि न थींदो ही सिंध हमेशह रहंदी
0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
4: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जी FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज FM 91 सिंध जो आवाज उधर
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज़ बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज़।
1: जीए एफएम नेटवर्क
2: सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: अब आप सुनेंगे जीए FM नेटवर्क पर KTN न्यूज,
4: ब्रॉट टू यू बाय
5: सोना यूरिया ग्रेनुलर, मिट्टी जो मान वधाए
6: मत किसी में। इंशाल्लाह ताला हम सिंध के इलेक्टेड लोग, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबर्स, जब तक एक भी जिंदा है ना, ये सिंध सूबा जो सदियों से है, जिसको अंग्रेजों ने कोशिश की तोड़ने की, वापस

0: सिंध के लोग इस सूबे को इकट्ठे किए और सिंध के लोगों ने पाकिस्तान बनाया। पाकिस्तान रेजोल्यूशन इसी हाउस ने पास की, तो न किसी के अंदर कुछ है तो वो निकाले। कोई फैसला नहीं कर सकता, कोई टीवी में बैठ के सेमिनार करा के ये फैसला नहीं कर सकता। फैसला इस हाउस में होगा, डिबेट इस हाउस में होगी, फैसला करेगा और इंशाल्लाह ताला ऐसा फैसला करेगा कि जो बाकी आवाजें चल रही है ना उनके सब बंद करेंगे। ये इसका हमेशा एक रहेगा सर।
1: सिंध असेंबली के अहम इजलास में नवन सूबन ए इंतजामी यूनिट्स बाबत रिथ से बहस। वडे वजीर सैद मुराद अली शाह चयो आहे त अंग्रेज भी सिंध जो विरांगो न करे सकिया। वडन वडन तोप मानुन इहो चयो अवां नवन सूबन जो बहस छेड़े छड़ियो आहे पर सभिनी जो मुंह बंद कर असेंबली में बहस कराइण आहे। सिंध बाबत फैसलो का अदालत न कंदी, नई पिंडी में थींदड़ सेमिनार या जलसन जलूसन में फैसलो थींदो। जेस ताईं असां मां हिक बि एम पी ए जिंदा आहे सिंध जो विरांगो न थींदो। सिंध हिकु आहे, हमेशा हिकु रहंदी। कंहिंजी ख़्वाहिश या तकरीरुनि सां सिंध जो विरांगो न थींदो। सिंध असेंबली जे इजलास में इहो फ़ैसिलो थींदो त सिंध जो विरांगो कॾहिं बि न थींदो। वॼायो ताड़ियूं, ही सिंध हमेशा रहंदी।

0: कोई सामने हो या पर्दे के पीछे हो, ये 50 सालों से खेल रहे पाकिस्तान की धरती के साथ कि बलूचिस्तान के हालात को देख रहे हो तो कहां पहुंच गई। क्या तुम फिर चाहते हो कि सिंध भी इस हालात में आ जाए? और तोड़ोगे? कितना तोड़ोगे? क्या तोड़ के करोगे? क्या मिलेगा? कि है तो सिंध एक है, नहीं तो कुछ नहीं।
1: कि तुम अपने अकीदों के नेजे हर दिल में उतारे जाते हो, हम लोग मोहब्बत वाले हैं, तुम खंजर क्यों लहराते हो? तुम्हारा वजूद है, अब ये कैसे मान सकते हैं? कैसे तस्लीम करा? बाजू अलग हो जाए, टांग अलग हो जाए, सिर अलग हो जाए, धड़ अलग हो जाए, ऐसा कतन नहीं हो सकता। ये मुमकिन ही नहीं है कि सिंध की तकसीम की बात हो।
2: सिंध असेंबली में रिथ पेश करण जो मकसद सिंध सूरत हाल का आगाह करण है। सिंध की अवाम पैंजो रद्द अमल दे छो है। सोशल मीडिया उन जो गवाह है जिनके इन धरती पनाह दिनी, उही मादरे वतन ए माओ जा टुकड़ा करण की गाल कर रहा है। सिंध के मुस्तकबिल जो फैसलो सिंध जो अवाम ए चूंडल नुमाइंदा कंदा। पीपल्स पार्टी MPA निसार खोड़ो जो सिंध असेंबली में खिताब। पीपल्स पार्टी मेंबर राजा रजाक बलोच चयो तो सिंध असां जो वजूद है, पंजी वजूद की विरासत किने था करे सकूं। सिंध एक तारीख, तहजीब ए सुणप है। सिंध की विरासत जो शोशो छड़ीदड़न के याद रखन घुर्जे तो जेस ताई एक बे हलाली पुट मौजूद है तो सिंध विरायजी न संगदी। डॉक्टर सिकंदर शोरो चयो तो पांजन आकाउन के खुश करण लाए सिंध जी वारन के इखलाकी तौर अड़ी गाल करण भी न घुर्जे। पुरम करीम सुमरो चयो तो खबर पैजी वेंदी तो सिंध जो हलाली पुट केर आहे। असं गोलियों खायण लाए तैयार आयूं पर पांजी माओ सिंध के विरायण न दींदासी। मौसम नकवी केर थींदो आहे जेको सिंध जे विर्छ करण वारो। असेंबली में वेठल असां सभिनी के इस्लामाबाद के पैगाम ॾियणो आहे त सिंध हिक आहे, हमेशा हिक रहंदी, दुनिया जी ताक़त उन खे विराए नथी सघे।
3: आज इसे कोई भी आवाज अगर सूबों की उठ रही है या एक मुशर्रफ साहब ने उसको 5 डिस्ट्रिक्ट में 2000 में तब्दील किया। सर सिंध एक है, एक रहेगा। मैं मुराद अली शाह साहब की बात से इत्तेफाक करता हूं। सिंध को कोई नहीं तोड़ सकता, लेकिन इंतजामी यूनिट बनाने से सिंध मजबूत होगा।
4: मुझे सिर्फ इतना, जब इस सिंध में शहर हो सकते, डिस्ट्रिक्ट हो सकते, डिवीजन हो सकते, तो इस इतनी फिक्र है 22,000 अरब।
2: सिंध फैमिली रिथ पेश करण से MQM मेंबर्स निसार खोड़ो जा थोरा मञिया। शारिक जमाल चयो त असीं सिंध खिलाफ़ न आहियूं, सिंध जो हिकु इंच बि हेॾां होॾां न थींदो, पर हीउ कहिड़ो दलील आहे त इंतज़ामी यूनिट्स ठाहिण ई न ॾींदासीं? असांजी धरती माउ पाकिस्तान आहे, सिंध जी हुकमरानी घुर्जे थी त असांजो साथ ॾियनि। रिहान अक्रम चयो त नव मनसूबनि बाबति महमली रिथ अचण सां असांखे पंहिंजो मौक़िफ़ पेश करण जो मौको मिलियो आहे। शहीद ज़ुल्फ़िकार भुट्टो 1973 ईस्वी में आईन में नव मनसूबनि जे क़याम जो तरीक़ेकार वाज़े कयो हो। भुट्टो खे ख़बर हुई त मुस्तक़बिल में नव मनसूबनि जी ज़रूरत पइजी सघे थी। आदिल

सिकरी चयो त सिंध जे विरहाङे बाबति क़रारदाद आणण बदिरां पंहिंजे गवर्नेंस ठीकु कयो। सिंध साउथ ऐं सिंध वेस्ट जहिड़ा सूबा ठही सघनि था। हिकु वज़ीर तालीम निज़ाम न हलाए सघे त पोइ पंज वज़ीर हुजणु घुर्जनि। आमिर सिद्दीकी जो चवणो हो त को बि नथो चाहे त सिंध विरहाइजे, पर अवाम जा मसला हल न आहिनि कया। आम सिंधी माण्हू जी हालत कहिड़ी आहे? पंहिंजा महल ठाहे छॾिया अथऊं।

दहेक जी ठाकड़ी अदालत भारत के पाकिस्तान से कैल सिंध टॉस मुआदे की पासदारी करण जो हुक्म दे छो। भारत के पन बिजली मनसूबन से भी कम रोकने जो हुक्म। पाकिस्तान सिंध टॉस मुआदे बाबत आलमी ठाकड़ी अदालत के फैसले की आजियां कन्दे चो है त आलमी सालसी अदालत पंजे फैसले में अबूरी कदम जारी कया आहन। अजा तफसीली फैसलो जारी ना किया वो। सिंध टॉस मुआदो खत्म ना थो नई उन ऑपरेशन मुअत्तल थन। भारत सिंध टॉस मुआदे से मुकम्मल अमल दरामद जो पाबंद है। फैसले मूजिब भारत के सिंध टॉस मुआदो मुअत्तल करने की इजाजत ही ना है जदे त आलमी कानून तहत भी भारत सिंध टॉस मुआदो मुअत्तल नो कर सके।

कुझु अरसे जी ख़ामोशीअ बाद अमरीका ऐं ईरान जा हिक ॿिए ते ॿीहर हमला। अमरीका जो ईरानी बेट लारत ते मेज़ाइल हमिलो। ईरान जो जवाब में उर्दन ऐं यूएई में मौजूद अमरीकी अॾनि ते वार। आबनाए हुर्मज़ में अमरीकी ड्रोन पे तबाह करण जी दावा। अमरीकी सेंटकॉम चयो आहे त आबनाए हुर्मज़ में बारूदी सुनगू विछाइण वारी कोशिश रोकण लाइ ईरानी लारक बेट ते हमिलो कयो आहे। पासदारान इनकलाब अमरीकी हमले जी तस्दीक कंदे चयो त अमरीकी हमले में केतिरा ई फौजी शहीद थिया आहिनि। हमले जे जवाब में उर्दन ऐं यूएई में मौजूद अमरीकी अॾनि खे निशानो बणायो वियो। आबनाए हुर्मज़ मथां उॾाम कंदड़ अमरीकी ड्रोन MQ-9 खे बि किरायो वियो आहे। ईरानी बेट लारक खे तबाह करे छॾियो आहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प ईरान ते हमले जी तस्दीक कंदे चयो आहे त ईरानी बेट लारक खे तबाह कयो वियो। ईरानी सदर मसूद पशिकियान चयो त ख़िते में बदमनी ऐं अदम इस्तेहकाम कंहिंजी बि मफ़ाद में नाहे। तहरान जंग नथो चाहे पर जारियत जो मुंहं टोड़ जवाब ॾींदो।

0: एक तो सोशल मीडिया ने मेरा बाप पक्की मंगनी शादी करवा दी है। मैं वाजे कहूँ कि ऐसा है ना ही मैं किसी प्रिंसेस ग्लोरिया को जानता हूँ। असल में ये सोशल मीडिया तमाशा असल इश्यू से अवाम का तवज्जो हटाने के लिए उछाले जाते हैं।
1: बिलावल भुट्टो सरदारी पंजी मंगनी वारन खबरों के रद्द कंदे समूरे ड्रामे के पिम्स थाने समेत असुल मामलन तां ध्यान हटाने की साजिश करार दे छो। बिलावल भुट्टो चयो तो सोशल मीडिया ते मुझी मंगनी शादी भी कराए छी आऊं कें भी शहजादी ग्लोरिया के नथो सुणा। सोशल मीडिया ते अड़ा तमाश तां ध्यान हटाने लाय कया वेंदा। एक वजीर पाकिस्तान जो गोरबा चौक बणजण।

कजाटरीह टुकड़ा करण चाहे तो जै वजीर का एक अस्पताल में नथी संभालजे वो वरी लाहौर के व्यापारियों के चवे तो सूबा ठायो उन्हें हलायो इहो उन वक्त अड़ी गाल रो है जडे सिंध असेंबली मां इन मामले से एक जरूरतमंद मौकिफ अख्तियार कर रही है।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर दारो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दारा।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बदलता रहो।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए
3: जफर ए खुरम शहजाद के रिलीज कर टी टेस्ट मैच लाए साइम अयूब अब्दुल्ला फजल मोहम्मद इमरान जूनियर इर्स मोहम्मद कोच ने बॉलिंग कोच उमर गुल बे डेह वरंदा मार्शल आसिम मुनीर जो अहम मुलाकातों पाकिस्तान सऊदी अरब ए तुर्की विच में दिफाई सहकार वधाने ते इतफाक सऊदी अरब के बचाव वाले वजीर शहजादे खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद तुर्की के परदेही वजीर हाकान फैदान से मुलाकात तुर्की के कौमी दिफा वाले वजीर

0: तुर्क जनरल स्टाफ जे सरबराह अबे फील्ड मार्शल सां मुलाकातूं कयूं। मुलाकात दौरान गॾियल दिलचस्पी जे मामलनि, बेतरफ़ी दिफ़ाई सहकार ऐं इलाक़ाई सलामतीअ जी सूरतहाल ते ख़्यालनि जी ॾे वठि। SPR मूजिबि आर्मी चीफ़ जूं मुलाकातूं टिन्ही मुल्कनि विच में भाईचारे जी मज़बूत लाॻापन ऐं वधंदड़ दिफ़ाई सहकार जी अकासी कनि थियूं।
1: अगर हिम्मत है तो इस असेंबली में रेजोल्यूशन लाओ, नहीं है हिम्मत किसी में, इंशाल्लाह ताला हम सिंध के इलेक्टेड लोग, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबर्स, जब तक एक भी जिंदा है ना, ये सिंध सूबा जो सदियों से है, जिसको अंग्रेजों ने कोशिश की तोड़ने की, वापस सिंध के लोग चुके, लोकिस्तान बनाया, पाकिस्तान रेजोल्यूशन इसी हाउस ने पास की। तो मेहरबानी करके किसी के अगर खाम ख्याल में कुछ है तो वो निकाले, कोई कोर्ट के फैसला नहीं कर सकती, कोई जलसे में बैठ के तकरीर करके ये फैसला नहीं कर सकता, कोई टीवी में बैठ के सेमिनार करा के ये फैसला नहीं कर सकता, फैसला ही फैसला करेंगे, बाकी हवाले सब मुंह बंद करेंगे हमें, एक रहेगा।
0: अहम इजलास में नवन रिथ ते बहस वली शाह चयो आहे त विरांगो न करे सघिया। हुन इहो चयो अमन नवन सूबनि जो बहस छेड़े छॾियो, दल असेंबलीअ में बहस नई पिंडीअ में थींदड़ से कंहिंजी ख़्वाहिश वांगुरु न थींदो।

0: कोई शिक्षे हो कि धरती के साथ के हालात को देख रहा है तो कहां पहुंच गए भी इस हालात में आ जाओगे कितना तोड़ेगा। कैसे मान सकते हैं, कैसे है? टांग अलग हो जाए, सिर अलग हो जाए, धड़ अलग हो जाए, ऐसा कथन नहीं हो सकता।
1: रहा आहिनि सिंध जे मुस्तक़बिल जो अवाम ऐं चूंडियल नुमाइंदा कंदा। पीपल्स पार्टी एमपीए निसार खोड़े जो सिंध असेंबली में ख़िताब। पीपी मेंबर राजा रज़ाक बलोच चयो त सिंध असांजो वजूद आहे, पंहिंजे वजूद जी विरासत कीअं था करे सघूं। सिंध हिकु तारीख़, तहज़ीब ऐं सुञाणप आहे। सिंध जी विरासत जो शोशो छॾींदड़नि खे यादि रखणु घुर्जे त जेसि ताईं हिकु बहिलाली पुटु मौजूद आहे त सिंध विरहाइजी न सघंदी। डॉक्टर सिकंदर शोरो चयो त पंहिंजनि आकाउनि खे ख़ुशि करण लाइ सिंध जे विरांगे जूं ॻाल्हियूं कयूं पियूं वञनि। फॉर्म 47 ते अचण वारनि खे इख़लाक़ी तौर अहिड़ी ॻाल्हि करण बि न घुर्जे। खुरम करीम सुमरो चयो त ख़बर पइजी वेंदी त सिंध केरु आहे। असां गोलियूं खाइण लाइ तयार आहियूं पर पंहिंजी माउ सिंध खे विरहाइण न ॾींदासीं। हुसन नकवी केरु थींदो आहे सिंध जी विर्छ करण वारो। इस्लामाबाद खे पैगाम ॾियणो आहे त सिंध हिकु आहे, हिकु रहंदी। दुनिया जी का बि ताक़त हुन खे विरहाए नथी सघे।
2: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद।
3: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज। ॿुधंदा रहो।